यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष रूप से विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार

0: विमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। खेती की बातें कार्यक्रम में मिर्च की खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम मिर्चा की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। समय चल रहा है, आप इसकी पहले नर्सरी तैयार करें और फिर मुख्य खेत में रोपाई करें। LCA 235, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, जवाहर मिर्च 218, ये सब इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। संकर किस्मों को भी बो सकते हैं, जैसे तेजस्विनी प्रजाति है, आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अच्छी प्रजाति के बीज उपलब्ध करा रही हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी पाई गई है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच हो, मिर्चा की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मिर्चा की खेती के लिए खेत की 2-3 बार जुताई करके पाटा चला करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। एक हेक्टेयर खेत में अगर नर्सरी तैयार करना है तो 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इससे जो पौ तैयार होगी उससे एक हेक्टेयर खेत में रोपाई की जा सकेगी। इसकी नर्सरी के लिए जो क्यारियां बनाते हैं उसके लिए ये जरूरी है कि मिट्टी जीवांश युक्त हो, यानी कि उसमें गोबर की खाद या सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद अच्छी तरह से मिलाकर तैयार की जाए। जब क्यारियां बनाते हैं तो यह ध्यान रहे क्यारियों की लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए। प्रति वर्ग मीटर की दर से 10 ग्राम डाई अमोनियम फास्फेट और 1 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके नर्सरी अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। क्यारियां जमीन की सतह से 20 से 25 सेंटीमीटर उठी हुई हों। यह ध्यान रहे कि जो बुआई करें तो वो अधिक घनी नहीं होनी चाहिए। पंक्त से पंक्त की अगर बुआई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहने का मतलब ये कि लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बना करके और फिर इन्हीं लाइनों पर मिर्चा की बुआई करते हैं। बीज की बुआई के बाद क्यारियों को सड़ी हुई गोबर की खाद या पत्ती की खाद, कंपोस्ट खाद से ढक देते हैं, जिससे ऊपर की मिट्टी बैठने न पाए। तत्पश्चात फुहारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अब इन क्यारियों को धूप व ठंड से बचाने के लिए घास फूस की छप्पर से ढक देना चाहिए। जब बीज पूर्णतया जम जाए तो घास फूस हटा लेना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार फुहारे से हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। हाँ, अगर बारिश होती है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से लगभग 4 सप्ताह में पौध रोपाई के योग्य हो जाती है। रोपाई करने के लिए मुख्य खेत को तैयार करने हेतु सबसे पहले 250 से 300 कुंटल खूब सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला देते हैं। इसके बाद फिर तत्व के रूप में 100 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि लगभग 200 किलोग्राम यूरिया, 240 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई से पहले ही

0: खेत में मिला देना चाहिए तथा शेष जो नाइट्रोजन बचती है उसे दो बराबर भागों में बांट करके पहली मात्रा रोपण से 25 दिन बाद और फिर जो शेष मात्रा बचती है उसे 45 दिन बाद खड़ी फसल में बुरकाव करना चाहिए। पौधरोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करना जरूरी है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। मिर्च की फसल में पानी की मात्रा, मिट्टी की किस्म, क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा और उगाई जाने वाली किस्म पर निर्भर करती है। यदि वर्षा कम हो रही है तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। गर्मी के महीनों में सिंचाई एक सप्ताह के अंतराल पर करना चाहिए। ध्यान रहे, वर्षा का पानी खेत में ज़्यादा समय तक नहीं लगे रहना चाहिए, अन्यथा पौधे मर जाते हैं। अतः जैसे ही खेत में ज़्यादा पानी लग जाए तो उसकी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर मिर्चा की खेती करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में मिर्च की खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। हे सर्वशक्तिमान, हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करो, हमारे कष्ट हरो।

मन में जब भी बसाने की बात हो तो प्रभु आप हैं जिन्हें हम पल पल याद करते हैं, अपने मन में बसाए रखते हैं।

सच्चा सुख तो केवल भक्ति में है। भक्ति के लिए केवल सच्चे मन की आवश्यकता होती है, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं।

0: अभी आप दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुन रहे थे। आज के गायक कलाकार थे जगजीत सिंह, हरिहरन, लता मंगेशकर और मीना कपूर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में श्रम के महत्व पर विचार सुनिए।
1: दस बातों में हैं, नौ रोजी कमाने में और एक ईश्वर की पूजा करने में। जो आदमी मेहनत से जी चुराकर किसी से कुछ मांगता है तो ईश्वर उस पर मोहताजी का दरवाजा खोल देता है। कुरान इसे मना करता है और परिश्रम से रोजी कमाने पर बल देता है। किसी मनुष्य का जंगल की ओर रस्सी लेकर जाना और लकड़ियां लाकर बेचना कहीं ज्यादा अच्छा है इस बात से कि वो किसी से कुछ मांगे, चाहे लोग उसे कुछ दें या ना दें। एक ईमानदार मेहनती को ईश्वर कहीं ज्यादा प्यार करते हैं उस आदमी के मुकाबले जो स्वस्थ हो लेकिन आलसी हो। हजरत दाऊद, जो ईश्वर के पैगंबर थे, जब उन्हें श्रम का महत्व ज्ञात हुआ तो वे लोहे से जरह बख्तर बनाकर बाजार में बेचने लगे। इसी प्रकार हजरत सुलेमान भी एक पैगंबर हुए हैं। एक बार उन्होंने ईश्वर से प्रश्न किया था कि ऐ अल्लाह, आपने मुझे बड़े आराम से इस संसार में भेजा और रखा, कृपा कर ये बताइए कि आप किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा चाहते हैं? मेरे पास धन, संतान और राज्य सभी कुछ हैं, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे अच्छा और शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूं। ईश्वर की ओर से आवाज आई, सुलेमान, याद रखना, जिस आदमी ने इस उद्देश्य से श्रम किया कि वो इस कमाई से अपनी भूख मिटाए और अपने शरीर को ढांके फिर मेरी इबादत करे, उसी को मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। उन्होंने जब ईश्वर का ये संदेश पाया तो पत्तों से झोले बनाना सीखा और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का काम चलाने लगे। परिश्रम करने वाले पृथ्वी पर अल्लाह के अमीन हैं। जब श्रम से मनुष्य अलग हो जाता है तो अनुचित धन उसके पास आने लगता है जिसमें बरकत नहीं होती, और ऐसे धन से पली संतान भी ईश्वर और माता पिता दोनों की आज्ञाओं का उल्लंघन करती है और उनके जीवन भर बुरे काम करने और परेशान रहने की संभावना होती है। बिना परिश्रम के कमाया हुआ धन यदि दान भी कर दिया जाए तो उस पर कोई सवाब नहीं, यदि खर्च किया जाए तो बरकत ना होगी। मृत्यु के बाद यदि ऐसा माल किसी के लिए छोड़ा जाए तो वो पाने वालों को भी तबाही के कगार की ओर ले जाएगा। भीख मांगना पाप है। हजरत मोहम्मद साहब, जिन्होंने कुरान को सबसे अधिक समझा और बरता भी,

श्रोता, हम विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप श्रम के महत्व पर विचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। केवल काली पुतली का दान, ज्योतिदान, नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाएं। नेत्रदान का संकल्प आज ही लें। ज्योति वो अमूल्य

0: ज्योति वो अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। दृष्टि के आनंद को बांटिए, जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, नेत्रदान महादान। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मृतक देह कुछ नहीं खोती, नेत्रदान से मिले ज्योति। जीवन का अमूल्य वरदान, नेत्रहीन को करें नेत्रदान। नेत्रदान करेंगे दुनिया फिर से देखेंगे, नेत्रदान महादान जो आपको बनाता है महान। मरता है शरीर, अमर है आत्मा, नेत्रदान से स्वयं मिलता है परमात्मा। चिता में जाएगी राख बन जाएगी, कब्र में जाएगी खाक बन जाएगी, कर दो अपनी आंखों का दान, किसी की जिंदगी संवर जाएगी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में लीजिए असामान्य रक्तचाप से होने वाली समस्याएं और समाधान विषय पर डॉक्टर अंबिका प्रसाद यादव द्वारा दी गई ये जानकारी सुनिए।
1: डॉक्टर अंबिका प्रसाद यादव, MBBS, MD मेडिसिन, फिजिशियन, कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट। मैं आज बात ये करने जा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो क्या होगा। अगर ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसे मलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये बहुत बड़ी इमरजेंसी। अगर किसी का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 180 के ऊपर और डायस्टोलिक 120 के ऊपर आ जाए तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। इसमें आपको तुरंत डॉक्टर पास जाना चाहिए। अगर डॉक्टर आपको ऑब्जर्वेशन में भर्ती करना चाहता है तो आपको एडमिट रहना चाहिए, क्योंकि इतने ब्लड प्रेशर पे आपको कोई भी बड़ी समस्या हो सकती है। इतने ब्लड प्रेशर पे कई बार दिमाग में सूजन आ सकती है, इसे ब्रेन एडिमा हो जाता है। कई बार नसें फट जाती हैं, फट जाती तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आपको फालिज हो जाएगी। और कई बार क्या होता है, इतना ज्यादा बीपी बढ़ा रहता है तो आंखों के पीछे भी सूजन आ जाती है, जिसे पैपिलेडिमा बोलते हैं। आपको कई बार देखने में समस्या होने लगती है, बिल्कुल नहीं दिखता है। कई बार नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, इपिटैक्सिस बोलते हैं, तो इतना ज्यादा बीपी है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर की बात, सलाह माननी चाहिए। अगर वो कह रहा है कि आप ऑब्जर्वेशन में 24-48 घंटे भर्ती हो जाए तो भर्ती हो जाइए। और जब इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो धीरे धीरे उसको दवा दे के ग्रेजुअली उसको कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे ही ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ले आते हैं। दोस्तों, अगर हम नियमित रूप से डॉक्टर के पास विजिट करें और अपने ब्लड प्रेशर की दवाएं नियमित रूप से खाएं, अपने खान पान को दुरुस्त रखें, खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, फ्रूट का सेवन ज्यादा करें, खाने में नमक का सेवन कम करें, तो अनियंत्रित ब्लड प्रेशर होने से बच सकते हैं। प्रॉब्लम तभी आती है, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर तभी होता है जब कुछ लोग, डॉक्टर का इलाज चल रहा होता है और एक बार बीपी नॉर्मल आ जाता है तो लोग क्या करते हैं कि वो दवाई छोड़ देते हैं। और जब दवाई आप छोड़ दोगे तो अचानक बीपी बढ़ जाएगा, और अचानक बीपी बढ़ने की वजह से वही समस्या होगी जैसे मैंने आपको बताया। इस वजह से आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए। जितनी दवा पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है उतनी दवा रेगुलर करते रहिए, और साथ में खाने में अत्यधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। आप अपना खान पान नियंत्रित रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, और नियमित रूप से दवाएं लेते रहिए। अगर आप नियमित रूप से दवा लेते रहेंगे, खान पान नियंत्रित रखेंगे, डॉक्टर की बात मानेंगे और समय समय पे डॉक्टर का चेकअप कराएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा, और कभी भी अचानक ब्लड प्रेशर फिर आपको नहीं बढ़ने पाएगा। कभी भी देखिए तनाव में रहें, अपने तनाव को भी कम रखना चाहिए। अगर आप अपने तनाव को कम नहीं रखते हैं तो उससे भी अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कई बार अचानक कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और स्ट्रेस बढ़ता है तो उससे भी अचानक बीपी बढ़ जाता है। तो आप नियमित रूप से रेगुलर अपनी एक्सरसाइज रखिए, दिनचर्या करेक्ट रखिए, खाने में हरी साग सब्जी साबुत अनाज का उपयोग ज्यादा करिए, खाने में नमक का सेवन ज्यादा नहीं करिए, और डॉक्टर ने जो भी दवा आपको प्रिस्क्राइब किया है, जितनी दवा पे आपका बीपी नॉर्मल है उसको आप रेगुलर लेते रहिए, और नियमित समय पे डॉक्टर के पास विजिट करिए तो आपको अचानक जो बीपी बढ़ने की समस्या है वो नहीं होगी। धन्यवाद।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी असामान्य रक्तचाप से होने वाली समस्या

समस्याएं और समाधान विषय पर डॉक्टर अंबिका प्रसाद यादव जानकारी दे रहे थे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। साथियों, स्वच्छता ही सेवा ध्येय वाक्य अमल में लाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपना जीवन अमूल्य बनाएं। आओ दोस्तों, स्वच्छता अपनाएं, कार्यालय की गरिमा बढ़ाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। स्वच्छ होगा जब वातावरण, तभी होगा नवजागरण। आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की मूल भावना को अपनाएं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ।

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुलदेवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुलदेवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। आज की कड़ी के गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर वसाथी। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। आज हमारे केंद्र से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की कड़ी संख्या 17। प्रसारण समय रहेगा सुबह 10 बजे से। इसी कार्यक्रम की कड़ी संख्या 18 आप सुनेंगे आज रात्रि 8:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर गायन आप सुनेंगे। कलाकार होंगे उस्ताद विलायत हुसैन खान। इसी कार्यक्रम में दिन 12:45 पर गायन आप सुनेंगे। कलाकार होंगी पद्मा तलवलकर। साथ ही प्रातः 7:31 पर सितार वादन आप सुनेंगे। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत यानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार होंगे नीरज मिश्रा। आपकी पसंद ये कार्यक्रम रात 10 बजे से प्रसारित किया जाएगा। अंजुमन गैर फिल्मी गीत और गज़लों का कार्यक्रम रात 9:30 पर तथा सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे मिताली सिंह एवं दिन में 12:30 पर रामशंकर कलाकार होंगे। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई ब्याते समय पशुओं की देखभाल विषय पर डॉक्टर मनोज कुमार और सतीश कुमार यादव के बीच की गई बातचीत के अलावा आराधना सिंह के गाए लोकगीतों का भी आनंद उठा सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता शाम 5:15 पर आज की बात मेरी पसंद यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना और फिल्म संगीत सुनेंगे। धरती के गीत कार्यक्रम में बघेली गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे से। शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कहकशां का समय रहेगा दिन में 2:30 का और लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन 1:45 पर एवं प्रातः 9:50 पर आराधना सिंह कलाकार होंगी। अंगनैया कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर ग्रामीण बहनें गर्भाशय गांठ की समस्या और इसकी समुचित चिकित्सा विषय पर डॉक्टर एकता तिवारी से बातचीत के अलावा गीत संगीत का भी आनंद उठा सकती हैं। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय दिन में 12 बजे से होगा। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस ईमेल पर आधारित आप सुनेंगे सुबह 11 बजे से। झनकार कार्यक्रम सुबह 10:35 पर प्रसारित किया जाएगा। मधुरिमा का समय रहेगा प्रातः 8:45 का और गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से सुना जा सकता है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की कड़ी संख्या 17 का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे से। इसी कार्यक्रम की कड़ी संख्या 18 आप सुनेंगे आज रात्रि 8:10।

पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर गायन आप सुनेंगे। कलाकार होंगे उस्ताद विलायत हुसैन खान। इसी कार्यक्रम में दिन में 12:45 पर गायन आप सुनेंगे। कलाकार होंगी पद्मा तलवलकर। साथ ही प्रातः 7:31 पर सितार वादन आप सुनेंगे। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार होंगे नीरज मिश्रा। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से।

गुड मॉर्निंग बनारस। हे बनारस, गुड वाला मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ट्यून किया है आपने अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 एफएम पर। और बनारस शो चल रहा है गुड मॉर्निंग बनारस का, तो हमें कुछ अच्छी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। और सुबह के समय अगर कुछ अच्छी लेकिन सिंपल सी आदतों को अपनाया जाए, जैसे फोकस, ब्रीदिंग, तो ओवरऑल वेलबींग बेहतर बनती है। हर छोटी एक्टिविटी आपको पूरे दिन के लिए तैयार करती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमें सुबह कौन से 5 काम करने चाहिए ताकि हमारा पूरा दिन एनर्जेटिक बना रहे। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद पहले थोड़ा सा पानी आराम से मलासन में बैठना चाहिए। इसके बाद हल्की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आपकी बॉडी आगे की एक्टिविटी के लिए तैयार होती है। दरअसल रात भर जब हम कई घंटे तक लेटे रहते हैं तो सुबह उठने के बाद शरीर अकड़ा हुआ और सुस्त सा महसूस होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले स्ट्रेचिंग, योगा या फिर वर्कआउट करके इसे एनर्जाइज करें। मॉर्निंग में कुछ मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज को देना चाहिए, इससे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और नर्वस सिस्टम भी शांत होता है। इससे आप न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी एक्टिव हो जाते हैं। इसमें आप अलग अलग तरह के एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे बेली ब्रीदिंग यानी कि पेट से सांस लेना और बॉक्स ब्रीदिंग। साथ ही इससे न सिर्फ शरीर को विटामिन डी मिलता है बल्कि हमारी मसल्स भी एक्टिव करने में मदद मिलती है और नेचुरल लाइट मूड को बूस्ट करती है। हालांकि गर्मी में ध्यान रखें कि जल्दी उठें ताकि आप हल्की सनलाइट बाथ ले पाएं। इससे शरीर में पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने में मदद मिलती है। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में जिम्मेदारियों और कंपटीशन के बीच हमारा शरीर ही नहीं बल्कि मन भी थक जाता है। इस वजह से लोगों में ओवरथिंकिंग, चिंता, एंजाइटी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं और प्रोडक्टिविटी पर भी बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप मेंटली सही नहीं रहते तो थकान, सुस्ती भी महसूस होने लगती है। इसके लिए जरूरी है कि आप रोजाना कुछ मिनट का ध्यान लगाने की आदत डालें। साथ अगर आप जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर नाश्ता स्किप कर देते हैं तो ये आदत आपकी सेहत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ ही दिन में एनर्जी भी लो हो जाती है। वहीं सुबह की जल्दबाजी आपके मेंटल स्ट्रेस को भी बढ़ाती है। जरूरी है कि आप समय से जागे ताकि सारे काम कर सके और एक बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सके। नाश्ते में हमेशा हल्की पचने वाली प्रोटीन फाइबर रिच चीजें खानी चाहिए। तो बनारस सुबह बस इन कुछ बातों का ध्यान रख लीजिए और रहिए पूरे दिन एनर्जी में। और साथ ही सुबह की आपकी एनर्जी को डबल करने के लिए मैं हूं ना गुड मॉर्निंग बनारस में आपकी दोस्त स्नेहा, सुना दी हूं आपको एक मस्त सा ब्यूटीफुल सा ट्रैक। तो एंजॉय करिए। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरी यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस आज दिन है गुरुवार और तारीख है 18 जून। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है अपने शहर बनारस में खास। डबल इंजन सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने काशी को 25 प्राथमिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के नवीनीकरण, मरम्मत, पुनरुद्धार और नवनिर्माण की बड़ी योजना तैयार की है। इस परियोजना पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्यदायी संस्था

विकास किया जाएगा। कक्षाओं का आधुनिकीकरण, शौचालय, पेयजल, बिजली, फर्नीचर और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि छात्रों को बेहतर और अनुकूल शिक्षा वातावरण मिल सके। इसके अलावा 19 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का मरम्मत व जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार का उद्देश्य केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाना है। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ेगी और ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी। साथ ही ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को भी शहरी स्तर की शिक्षा सुविधाएं मिल सकेंगी। नवनिर्माण व मरम्मत का कार्य स्मार्ट सिटी और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित गंगोत्री से गंगा सागर योग यात्रा के तहत वाराणसी के रविदास घाट पर एक भव्य योग और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गंगा तट पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग साधकों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। योग यात्रा का उद्देश्य गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में योग, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाना है। ये विशेष अभियान 13 जून को गंगोत्री से प्रारंभ होकर 20 जून को गंगा सागर तक पहुंचेगा। यात्रा ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और हुगली जैसे प्रमुख नगरों से होकर गुजर रही है। इस कार्यक्रम में वाराणसी का पड़ाव विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु रहे, जबकि आयुष मंत्रालय भारत सरकार की महानिदेशक डॉ. चित्रा बीजी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। अपने संबोधन में दोनों अतिथियों ने योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताते हुए नागरिकों से इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आवाहन किया। अतिथियों ने कहा कि योगा केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी माध्यम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग का उल्लेख करते हुए कहा कि बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य बनाए रखने, मानसिक तनाव कम करने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वक्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज विश्व के करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजा राम शुक्ल ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी ने सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सामूहिक योगाभ्यास, संवाद सत्र और जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का संकल्प भी किया। कार्यक्रम का संचालन आचार्य वागीश ओझा ने किया। इस दौरान अनेक गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद, योग प्रशिक्षक, विद्यार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और अब बात करें अगर आज के खास दिन की, तो आज है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। जी हाँ, हर साल 18 जून को ये दिन मनाया जाता है जो सभी को खुले में भोजन करने के सरल आनंद का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। ये वैश्विक उत्सव दोस्तों, परिवारों और समुदायों को बाहर इकट्ठा होने, स्वादिष्ट भोजन साझा करने और यादगार पल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने पसंदीदा स्नैक्स पैक करें, एक सुंदर सी जगह चुनें और ताजी हवा और अच्छे दोस्तों के साथ आज के दिन का आनंद लें। तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाने का पिकनिक मनाने से आसान कोई तरीका नहीं है। अपने कुछ करीबी दोस्तों और खाने पीने का सामान इकट्ठा करिए और आप एक शानदार समय बिताने के लिए तैयार हैं। जो लोग ज्यादा खाना बनाना नहीं चाहते, उनके लिए पोटलक यानी कि सबके साथ मिलकर खाना बनाना बेहतरीन विकल्प है। और कई लोगों के लिए खाने के बीच में कुछ न कुछ खेलने के बिना पिकनिक अधूरी है और कई लोगों के लिए खाने के बीच में कुछ न कुछ खेलने के बिना पिकनिक अधूरा है। तो अपने किसी भी रोमांचक खेल को आप खेलिए और किसी भी पिकनिक को यादगार पल बनाना आसान है आपके लिए। अपने शहर को एक्सप्लोर करने का इससे बेहतर बहाना क्या हो सकता है। आप पिकनिक के लिए बेहतरीन जगह की तलाश में निकलिए
मुमकिन है कि आपके आसपास कई ऐसे छिपे हुए पार्क होंगे।

जिन्हें आप अभी तक नहीं देख पाए हैं। शायद आपको अपनी कोई पसंदीदा जगह मिल जाए, तो निकल जाइए आज और मनाइए पिकनिक डे। तो बनारस अब इसी के साथ मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो अब गुड मॉर्निंग बनारस से दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त स्नेहा को। टाटा।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में यानी के 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की कार्य योजना को लेकर की अहम बैठक, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभावितों के पुनर्वास और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर दिया विशेष जोर। बदायूं में सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से दी शिकस्त। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।
3: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना को लेकर बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करते हुए शीघ्र ही कार्य योजना शासन को भेजी जाए, जिससे उन्हें इस माह के अंत तक स्वीकृत कर कार्य शुरू कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय पर संवेदनशील है तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों और मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावितों के व्यवस्थित पुनर्वास और उन्हें उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अवशेष कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों के कार्यों में विलंब है या जिन्होंने अभी तक कार्य शुरू नहीं

0: ही किए हैं, उनकी जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर भारत के प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है।
1: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमका योगदान हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। बदायूं जिले के थाना उझानी क्षेत्र में बुटला गांव के पास कल एक ट्रैक्टर व ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी।

0: हरियाणा स्टेडियम में कल हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत अफगानिस्तान के सामने 403 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 44 ओवर और 3 गेंद पर 232 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित गंगोत्री से गंगा सागर योग यात्रा के अंतर्गत कल वाराणसी में योग और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश सरकार में आयुष राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत पिछली 13 जून को गंगोत्री से हुई थी। 20 जून को गंगा सागर में इसका समापन होगा। वाराणसी इस यात्रा का एक पड़ाव रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज और कल कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में पूर्वी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को लेकर की अहम बैठक। परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावितों के पुनर्वास और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर दिया विशेष जोर। बदायूं में सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से दी शिकस्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सितार वादन। राग है नट भैरव, कलाकार हैं नीरज मिश्रा। आपके साथ तबला संगति प्रशांत मिश्रा की है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सितार वादन सुन रहे थे। राग था नट भैरव, कलाकार थे नीरज मिश्रा, आपके साथ तबला संगति प्रशांत मिश्रा की थी। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। ठीक सुबह 8 बजे से आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम

0: की एक सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
1: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
2: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
3: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेयर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
5: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की दो और मिजोरम से एक सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके

0: बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
5: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद सिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
6: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। जाएगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील

0: लेने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट ए एफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series to take unassailable 2-0

0: पाकिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के आखिरी मरहले में कल रात पेरिस पहुंचे। फ्रांस की राजधानी पहुंचने पर होटल में जमा हुए भारतीय बिरादरी के अफराद ने जनाब मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुरजोश हामियों ने वजीर आजम की हिमायत का इजहार करते हुए नारों के साथ उनका खैर मकदम किया। इसके साथ ही वजीर आजम ने पेरिस में अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। पेरिस में वजीर आजम मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह वीवाटेक 2026 में शिरकत करेंगे। वीवाटेक समिट यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्रोग्राम है, जहां तवक्को है कि जनाब मोदी भारत के फरोग पाते हुए जिद्दत तराजी के निजाम और तकनीकी तरक्यात को उजागर करेंगे। वजीर आजम एक खसूसी तकरीब में भारतीय बिरादरी के अफराद से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नुमाइंदे से।
1: वजीर आजम ने मोदी आज दो तरफा तजारत और इख्तराई शराकत दारियों को मजीद मजबूत बनाने की गरज से अपनी मसरूफियात को जारी रखेंगे। वो फ्रांस और यूरोप के कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक खसूसी गोलमेज इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें भारत के तेजी से फैलते हुए सनअती और टेक्नोलॉजी शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस दौरे का मरकजी हिस्सा आज बाद में वीवाटेक होगा, जो यूरोप की मुमताज टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है। वजीर आजम मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों समिट में आला सतह की सरगर्मियों की क्यादत करेंगे। इन सरगर्मियों का अख्ताम एक अहम कलीदी खिताब से होगा, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते हुए आलमी डिजिटल असर रसूख को उजागर किया जाएगा। ये वसी सफारती दौरा एक बड़े अवामी राबते के प्रोग्राम के साथ इख्ताम पजीर होगा। वजीर आजम वसी पैमाने पर मुनद होने वाली भारतीय बिरादरी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जिसमें रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और भारत की तहजीबी विरासत को उजागर किया जाएगा। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम मोदी G7 समिट में कई मुफीद और नतीजा खेज मीटिंगें करने के बाद पेरिस पहुंचे हैं। इन मीटिंगों में उन्होंने हुक्मरानी और पॉलिसी साजी के अहम उमूर पर भारत का मौकफ पेश किया और सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्हें आलमी खुशहाली के लिए तरक्की पजीर ममालिक के साथ करीबी ताउन की जरूरत पर जोर देने का मौका भी मिला। G7 के आउटरीच इजलास में वजीर आजम मोदी ने G7 मुल्कों, भारत और आलमी खित्ते जनूब की मुश्तरका ताकतों को यकजा करके राबते और तजारत को बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क तजवीज किया। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों पर मगरबी एशिया के बहरान के तवील मुद्दती असरात पर तशवीश का इजहार किया। G7 समिट के मौके पर वजीर आजम मोदी ने कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की, यूरोपीय यूनियन की आला रहनुमा उर्सुला ओन डेर लेन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मुत्तहद अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आले नहयान और कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी शामिल थे। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद जनाब मोदी ने समुद्री अमले के अफराद की सलामती का मामला उठाया और जोर देकर कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के नफाज के दौरान उनके तहफ्फुज को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वजीर आजम मोदी के पेरिस के दौरे से तवक्को है कि खसूसी तौर पर टेक्नोलॉजी, इख्तरा और अवाम से अवाम के राबते के शोबों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। अपने दौरे के पहले दिन मोहतरमा मुर्मू मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में रूहानी बेदारी के जरिए कबायली समाज को बाख्तियार बनाने से मुतालिक एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: सदर जमहूरिया इंदौर पहुंचेंगी और फिर बैतूल का सफर करेंगी, जहां वो ब्रह्मा कुमारीज के जेर एहतमाम मुनाकिदा एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। बाद में मोहतरमा मुर्मू ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगी और शाम की आरती में हिस्सा लेंगी। 19 जून को सदर जमहूरिया सिकल सेल एनीमिया के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर मुनाकिदा एक तकरीब में शिरकत करेंगी। 21 जून को मोहतरमा मुर्मू जबलपुर में योग के बैन अल-अक़वामी दिन की तकरीबात में हिस्सा लेंगी। वो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 36वें जलसे तकसीम असनाद में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगी। इसके बाद वो नई दिल्ली रवाना होने से कबल कूनो नेशनल पार्क का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया के बैतूल के दौरे के पेश

0: 36वें जलसे तकसीम असनाद में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगी। इसके बाद वो नई दिल्ली रवाना होने से कबल कूनो नेशनल पार्क का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया के बैतूल के दौरे के पेश नज़र जिला कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनावने ने सिक्योरिटी इंतजाम के तहत बाज बंदिशें नाफिज की हैं। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: झारखंड में आज राज्यसभा की दो सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी इलेक्शन लड़ रहे हैं। झारखंड कानून साज असेंबली में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होगी और इसके बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। असेंबली के तमाम 81 रुकन असेंबली अपना वोट डालेंगे। फिलहाल हुक्मरान इत्तेहाद को 56 एमएलएज की हिमायत हासिल है, जिनमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई एमएल शामिल हैं। 24 एमएलए की हिमायत वाली अपोजिशन ने आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी की हिमायत की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और बरतानिया ने ऐलान किया है कि जामी इक्तसादी और तजारती मुआहिदा CETA इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। तजारत व सनत की वजारत ने बताया कि समाजी तहफुज से मुतालिक ये मुआहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC भी कहा जाता है, इस पर भी उसी दिन से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तजारत और सनत की वजारत ने बताया कि DCC के तहत छूट की मुद्दत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, जिससे भारत के आरजी वर्करों को बड़ा फायदा है। इस मुआहिदे को सराहते हुए तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि CETA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के नाफिज होने से भारत की दरामदात के लिए नए मौके पैदा होंगे, क्योंकि भारत ने 99% टैरिफ लाइन्स पर फौरी ड्यूटी फ्री रसाई हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि इससे टेक्सटाइल, चमड़े, मरीन, इंजीनियरिंग और डब्बाबंद खुराक से मुतालिक शोबों को बगैर किसी नुकसान के और अपनी आलमी सतह की मसनूआत सप्लाई करने में मदद मिलेगी। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्मार।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती मुआहदे से भारत और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तजारत और सरमाकारी को काबिल जिक्र तकवीत मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय किसानों, वर्करों, MSME, स्टार्टअप्स और इख्तराकारों के लिए रोजगार के बहुत से मौके पैदा होंगे। गुज़श्ता 12 वर्षों के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत की मरबूत और कसीर जहती हिकमत अमली, जिसमें मुनज़्ज़म सिक्योरिटी कार्रवाइयाँ, माली वसाइल की बंदिश और तेज़ रफ्तार तरक्याती प्रोजेक्टों का नफाज शामिल था, मुल्क को नक्सलिज्म और माओ नवाजों की दहशतगर्दी से पाक बनाने में कामयाब रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे मुल्क से नक्सलिज्म का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा और अब ये हदफ हासिल कर लिया गया है। गुज़श्ता बरसों में कई अहम सिक्योरिटी कार्रवाइयों ने माओ नवाजों के नेटवर्क की कमर तोड़ने में फैसला कुन किरदार अदा किया। 2022 में झारखंड के बुद्धा पहाड़ इलाके में ऑपरेशन ऑक्टोपस अंजाम दिया गया, जबकि इसी साल फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के जरिए झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातिहार जिलों को नक्सलिज्म से आजाद कराया गया। इसी तरह 2022 में ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, मगरबी सिंहभूम और खूंटी जिलों में माओ नवाजों के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाया गया। 2025 में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद से मुत्तसिल तकरीबन 50 किलोमीटर तवील और 37 किलोमीटर चौड़े पहाड़ी इलाके में चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बाकी मानदा माओ नवाज कारिंदों को शदीद नुकसान पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के बस्तर के रहने वाले एक शख्स ने हुकूमत की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाने का वादा पूरा कर दिया गया है।
3: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो पूरे मोदी सरकार को और अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
0: जमीनी सतह पर इस मरबूत हिकमत अमली के नतायज वाजे तौर पर सामने आए हैं। 2024 में 217 माओ नवाज हलाक किए गए, जबकि 2025 में ये तादाद बढ़कर 256 हो गई। साल 2000

0: 2026 में अब तक 26 माओनवाज हलाक किए जा चुके हैं। इस दौरान कई बड़े नक्सल रहनुमा भी मारे गए। इन सिक्योरिटी इकदाम के नतीजे में नक्सल से मुतासर इलाकों में तरक्की के एक नए सिलसिले का आगाज हुआ। झारखंड के जिला गुमला के रहने वाले टेम्बू ओराव ने कहा कि मोदी हुकूमत की तश्कील के बाद नक्सलिज्म बतदरीज खत्म हो गया और आज लोग अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं।
1: एक दशक पहले हमारा गांव क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद के जब्त में था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है, तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी गांव का विकास हो रहा है, धीरे धीरे रोड सड़क बन गया है, काफी अच्छा है।
0: आज नक्सलिज्म से पाक भारत की कहानी इस बात का सबूत है कि जमहूरियत, तरक्की और आईन ने कई दहाइयों पर मुहित तशद्दुद पर कामयाबी हासिल की है। दिल्ली से अक्षित वेदियान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पजश्कियान ने वर्चुअल वसीले से 14 निकाती मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को खत्म करना, अब नए हुरमुज को दोबारा खोलना और ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक हतमी माहदे के लिए 60 रोजा मुजाकराती अमल शुरू करना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान इस मफाहमतनामे पर ज़ाती तौर पर दस्तखत किए। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है कि मफाहमतनामे के मतन को हतमी शक्ल देकर दोनों फरीकों की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। इस माहदे के तहत अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी और मुतल्लिका पाबंदियों को खत्म करने का अमल शुरू करेगा, जबकि ईरान इब्तदाई 60 रोजा मुद्दत के लिए अब नए हुरमुज से तजारती जहाजों की महफूज और बिला मुआवजा आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान लखनऊ में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 49 ओवर 5 गेंद में 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 रन और ईशान किशन ने 125 रन बनाए। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
3: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, G7 इजलास में मोदी और ट्रंप की दो तरफा मुलाकात। वजीर आजम मोदी ने कहा कि अब नाए हुरमुज का खुला रहना दुनिया के लिए इंतहाई जरूरी है। उन्होंने भारतीय मल्लाहों के तहफ्फुज़ पर भी जोर दिया। सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी की तारीफ की। रोजनामा प्रताप ने अपने सफे अव्वल पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, विकसित भारत के लिए रियासतों को मरकज की अच्छी हुक्मरानी की पहल को अपनाना चाहिए। इसी अखबार ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के बयान को नुमाया किया है, वजीर आजम मोदी ने स्वच्छता को आवामी तहरीक की शक्ल दी। रोजनामा इंकलाब ने फीफा आलमी कप से मुतालिक खबर को शाये करते हुए लिखा है, फुटबॉल के आलमी मेले में सितारे जगमगा उठे।
2: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवा टेक समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती माहदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन माहदे पर दस्तखत किए हैं। और मर्दों की क्रिकेट में भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
4: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। साथ ही हम आपके लिए उपलब्ध हैं DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर भी। 8:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा।
5: बदलो आदत, बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो आदत, बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658
4: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
6: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
7: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
5: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
6: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का STD कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

श्रोताओं, आज की मधुरिमा के साथ नमस्कार आप सभी श्रोता साथियों को, आपके रेडियो साथी सिद्धार्थ का। आज इस कार्यक्रम में बातें होंगी सफ़र की। जी हाँ, हम जब भी सफ़र पर जाते हैं तो सफ़र की यादें हमेशा हमारे साथ होती हैं। हिंदी फिल्मों में भी कई खूबसूरत गीत, ट्रेन हो, बस हो, या तांगा हो, या बाइक हो, साइकिल हो, इन सभी के साथ फिल्माए गए हैं। कुछ गीतों को हमने भी चुना है आज के इस मधुरिमा कार्यक्रम के लिए। ये गीत है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, आवाज़ की

यह गीत फिल्म शोले से, जो अपने ज़माने की मशहूर फिल्म थी, सुपरहिट फिल्म की ये सुपरहिट रचना, जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का ये अंदाज़, इस गीत में आवाज़ किशोर कुमार की और मन्ना डी की है। गीत बाइक पर फिल्माया गया है।

0: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: श्रोताओं कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित मधुरमा आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। आज के कार्यक्रम में सफ़र पर अलग अलग सवारियों का प्रयोग जैसे ट्रेन

बस, बाइक, साइकिल आदि का प्रयोग किए गए चुनिंदा हिंदी फिल्मों के गीतों पर आधारित आज का ये कार्यक्रम है। ये गीत फिल्म जमानी को दिखाना है, इस फिल्म से है, और शैलेंद्र सिंह की जादुई आवाज़ पर्दे पर है और ऋषि कपूर इस गीत में आपको नज़र आएंगे। ये गीत, फिल्म का नाम जमाने को दिखाना है।

श्रोताओं, फिल्म ज़माने को दिखाना है। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। ऋषि कपूर पर फिल्माया गया था और ये गीत ट्रेन पर फिल्माया गया था। और अब हम आपको बताएं कि अगले गीत की जो बारी है वो है, वो भी ट्रेन पर ही फिल्माया गया है। और ऋषि कपूर एक बार फिर हैं, साथ में पेंटल हैं, और इस बार फिल्म है रफू चक्कर। आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ें। फिल्म का नाम रफू चक्कर।

और अब प्रोग्राम के आखिर में ये गीत जो कव्वाली के रूप में है और फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन, पल दो पल का साथ हमारा, और इसे ट्रेन में भी बखूबी शूट किया गया। और फिल्म की इस कव्वाली में मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले की मुख्य आवाज़ें हैं और पर्दे पर जितेंद्र और नीतू सिंह हैं। आइए सुने इस रचना को, और श्रोताओं इसी रचना के साथ ही आज का मधुरिमा कार्यक्रम समाप्त करने की आपके रेडियो दोस्त सिद्धार्थ को दें यही अनुमति। नमस्कार।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत पर आधारित मधुरिमा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए एटा और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
2: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत एटा के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। योजना के प्रथम चरण में 4 मार्गों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से राजा का रामपुर मार्ग पर 2 बसें और अमरोली रतनपुर और बिलसड मार्ग पर 1-1 बस चलाई जा रही है। लंबे समय से नियमित सार्वजनिक परिवहन से वंचित ग्रामीणों को इस पहल से बड़ी राहत मिली है। बस सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों और मरीजों को जिला मुख्यालय के अलावा कस्बों तक पहुंचने में सुविधा होगी। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए अन्य मार्गों को भी योजना से जोड़ने की मांग की है। परिवहन विभाग की ओर से चरणबद्ध तरीके से नए मार्गों पर बस संचालन की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जनपद के सभी 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। ये मेला बीते रविवार यानी 14 जून को लगाया गया। मेले में कुल 1030 मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। सबसे ज्यादा संख्या त्वचा रोगियों की रही। इसके अलावा पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, गैस और कब्ज से पीड़ित मरीजों ने भी उपचार लिया। मेले में 414 पुरुष, 477 महिलाएं और 139 बच्चे पहुंचे। चिकित्सकों ने बुखार के मरीजों की मलेरिया और डेंगू जांचें भी कराई, जिसमें कोई भी मरीज संक्रमित नहीं पाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण त्वचा और पेट संबंधी रोगियों की संख्या ज्यादा रही है और लोगों को स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूक रहने की सलाह भी दी गई है। जिले में अवैध रूप से संचालित 21 लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि संबंधित संस्थानों को 7 दिन के भीतर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में पंजीकरण न कराने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। विभाग का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करना है। जनपद में निराश्रित गौवंश की समस्या के समाधान के लिए शासन ने 2 बृहद गौशालाओं के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। पहली गौशाला मारहरा क्षेत्र के रहमतपुर माफी और दूसरी सकीट के नगला हरिकिशन में बनाई जाएगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आरपी शर्मा के अनुसार दोनों गौशालाएं 10-10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएंगी। इनमें गौशाला शेड, पानी की व्यवस्था, भूसा, गोदाम, कार्यालय कक्ष, सोलर लाइट और सुरक्षा के लिए फेंसिंग जैसी सुविधाएं होंगी।
3: एक गौशाला हमारी मरहरा ब्लॉक में रतनपुर माफी में, दूसरी गौशाला शकीर ब्लॉक के नगला हरिकिशनपुर में स्वीकृति गई है। इसकी क्षमता 400 गोवंश की होती है। इसके अलावा भूसा गोदाम, एक ऑफिस बनता है, पानी की टंकी बनती है, उसके बाद उसके अलावा बाउंड्री वाल होती है, इसमें निर्माण कार्य किया जाता है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में आर्ष गुरुकुल एटा में योग सप्ताह का भव्य शुभारंभ बीते सोमवार से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका परिषद एटा की अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी ने किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में योग साधकों ने सहभागिता की। योग के प्रशिक्षकों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास किया। तमाम योग के आसनों के लाभ भी बताए। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का भी प्रभावी माध्यम है। एटा के अलीगंज में महिला सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने को महत्वपूर्ण पहल की गई है। अलीगंज मैनपुरी मार्ग पर लगभग 3,30,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले महिला थाना भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, उप जिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता, सीओ राजेश कुमार मौजूद रहे। महिला थाना बनने से महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने, परामर्श और न्याय प्राप्त करने के लिए एक समर्पित मंच उपलब्ध होगा। इसी क्रम में जसरतपुर और नयागांव थाना इलाकों में 2 नई पुलिस चौकियों के निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। इससे ग्रामीण इलाकों में पुलिस की पहुंच और कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। जिलाधिकारी अरविंद सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इला मारन ने जैथरा के मानपुर गांव में एक प्रगतिशील किसान के कृषि फार्म का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वर्मी कंपोस्ट निर्माण, बायोफ्लॉक तकनीक से मत्स्य पालन, गेंदा पुष्प उत्पादन और औषधीय पौधों की खेती का अवलोकन किया।
1: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
4: 2 जून को गोरखपुर जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआ ताल में सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान डबल इंजन सरकार ताल पोखरों पर कब्जा नहीं होने देती बल्कि प्रकृति संरक्षण के दायित्वों का निर्वहन करती है। उन्हें बेहतरीन पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित कर

0: समाज को प्राकृतिक वातावरण में आनंदित होने का मंच देती है। 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निखारे गए इस पर्यटन स्थल को जनता को समर्पित करने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिलुआ ताल पर्यटन विकास परियोजना के अगले चरण में चिलुआ ताल को रामगढ़ ताल की तर्ज पर इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अच्छी सरकारें अच्छी चीजें लेकर आती हैं। उन्होंने बताया कि चिलुआ ताल में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे चिलुआ ताल में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। पूरे शहर की बिजली आपूर्ति यहां से संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामगढ़ ताल की तरह चिलुआ ताल में भी वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब लोग चिलुआ ताल को देखेंगे तो यह और भी अच्छा लगेगा। उन्होंने चिलुआ ताल के प्राकृतिक वातावरण की तारीफ करते हुए कहा कि चिलुआ ताल के किनारे लहरों से होकर आ रही हवा तापमान को कम कर सुखद एहसास करा रही है। यहाँ पर लोग परिवार के साथ आकर आनंद के साथ घूम सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। यहाँ न प्रदूषण है और न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था।
1: ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है। एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है।
0: 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज महुआ पार बड़हलगंज में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ से अधिक की लागत वाली 319 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह धरा माँ सरयू के आंचल में है। यहाँ का नौजवान जहाँ भी गया अपनी प्रतिभा व परिश्रम का लोहा मनवाया है। एक समय बाढ़ की त्रासदी और कनेक्टिविटी के अभाव में क्षेत्र के लोग पलायन करते थे। आजीविका के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ के नौजवान को बाहर नहीं जाना होगा। उससे यही रोजगार के ढेर सारे अवसर मिलेंगे। अब सरकार आपके द्वारा चुने गए विधायक सांसद डबल इंजन सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए विदेशों के लोगों को चिल्लू पार में काम करने का अवसर देने जा रहे हैं। विदेशी लोग आकर आपके यहाँ चाकरी करेंगे। सीएम ने विश्वास जताया कि विकास और विरासत की यात्रा के साथ चिल्लू पार वासी बिना रुके, डिगे, झुके, डरे निरंतर आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत गरीबों का कल्याण, विकास योजना, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल देते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाता है। उन्होंने कहा कि एक समय राम जानकी मार्ग पर आवागमन ठप था, उपचार के लिए लखनऊ जाने को मजबूर होना पड़ता था। कनेक्टिविटी, रोजवेज बस व अन्य साधन तक नहीं थे, जैसे तैसे व्यवस्था चल पाती थी, लेकिन आज कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले कोई सोचता था कि धुरियापार में इंडियन ऑयल का सीएनजी प्लांट लगेगा या सहजनवा का गीडा धुरियापार में आ पाएगा। यहाँ ग्रेटर गीडा बनाने जा रहे हैं हम। अभी से हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ गए हैं जिन्हें हमें उद्योग के रूप में स्थापित करना है। इसमें सीमेंट की फैक्ट्री धुरियापार में लगने जा रही है, पावर प्लांट, आधुनिक पेंट और अत्याधुनिक डिस्टिलरी जहाँ मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथ की दवा भी बनेगी। गोरखपुर जिले में बड़ा मंगल हर मंगल को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 16 जून को बड़े मंगल पर शहर के विभिन्न मंदिरों में बजरंगबली की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं ने की। इसके साथ ही जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जिले में योग दिवस 21 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर गोरखनाथ मंदिर व गोरखनाथ मंदिर के में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से योग दिवस पर शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को योग दिवस को लेकर गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन में योग किया जाएगा।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। ये पहली सूचना हमें मिली है तनिषा कन्नौजिया के लापता होने के बारे में। ये थाना तेजी बाजार जनपद जौनपुर से

0: ये सूचना हमें मिली है। सूचना अनुसार इनकी उम्र है 16 वर्ष और ऊंचाई है 5 फिट और शरीर की बनावट इकहरा बदन है और रंग गेहुआ है, चेहरा लंबा है। ये 1/3/2026 सुबह 9:30 से लापता हैं और कोचिंग पढ़ने गई थी और उसके बाद से घर वापस नहीं आ पाई। ये गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने हुए हैं और इनका चेहरा लंबा है। कोई भी सूचना आपको यदि इनके बारे में मिले तो थाना तेजी बाजार जनपद जौनपुर को देने की कृपा करें। एक और खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना हमें प्राप्त हुई है। थाना जिगना जनपद मिर्ज़ापुर से प्राप्त ये सूचना है और सूचना अनुसार रंजना देवी, जिनकी आयु है 23 वर्ष, चेहरा चपटा है और गोरा रंग है, आंखें सामान्य हैं और बाल काले हैं। ये हल्का गुलाबी कलर की कुर्ती और दुपट्टा काले रंग का ली हुई हैं और हवाई चप्पल पहने हुई हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना यदि आपको मिले तो आप थाना जिगना जनपद मिर्ज़ापुर को कृपया सूचित करें। एक और हमें खोए व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है और ये सूचना थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र से प्राप्त हुई है। लापता व्यक्ति का नाम है सुनीता और ये घटना स्थल जो है वो ग्राम शिवपुर है। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। ये दिनांक 23/2026 से लापता हैं, सुबह 10:30 से। आयु है 34 वर्ष, शरीर की बनावट गहरा बदन है, चेहरा लंबा है, आंखें काली हैं और रंग गोरा है इनका। पहनावा काला रंग, लाल रंग की साड़ी और काले रंग की सैंडल ये पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना यदि आपके पास हो तो थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र को देने की कृपा करें। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10:00 से 11:00 बजे के बीच। तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा।

0: पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप हमारे मेहमान में शायर जौहर कानपुरी से शम्सुल आरफीन की गुफ्तगू। पेशकश आसिफ इकबाल की है।
1: आज का उर्दू प्रोग्राम

0: प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, आज का हमारा खुसूसी उर्दू प्रोग्राम हमारे मेहमान है। हमारे मेहमान में आज शरीके गुफ्तगू हैं बैनुल अक्वामी शायर मोहतरम जनाब जौहर कानपुरी साहब। मोहतरम, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
1: बहुत शुक्रिया।
0: सबसे पहले मोहतरम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जौहर कानपुरी साहब को दुनिया जानती है, लेकिन जौहर साहब का हकीकी नाम क्या है?
1: इसके पीछे एक वाकया है
0: जी, आप जरूर बताएं, हमारे समय गौर से सुने आपको।
1: क्या हुआ ये कि 95 में मुशायरा था सऊदी अरब की राजधानी रियाज में,
0: जी,
1: जर्मनी हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में। जर्मनी हॉस्पिटल वहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है
0: जी।
1: कैसर साहब हैदराबाद के थे, वो कन्वीनर थे, गैबी जौनपुरी उसकी निजामत कर रहे थे। तो उन गैबी साहब ने अनाउंस किया थोड़ी देर के बाद कि साहब जौहर कानपुरी का जो असली नाम बताएगा एयर इंडिया की तरफ से उसे एक टिकट दिया जाएगा, कहीं से कहीं तक का भी टिकट वो ले सकता है, उसकी अपनी मर्जी पर। और एक मिनट का टाइम दिया गया साहब, एक मिनट पे हाल बिल्कुल सन्नाटा रहा, कहीं से कुछ जरा सी भी आवाज नहीं, सुनो नहीं, कुछ नहीं, यानी कि किसी को भी नाम नहीं मालूम था। आखिर में अनाउंसर ने अनाउंस किया कि साहब नाम कोई नहीं बता पाया, तो अब जौहर कानपुरी साहब अपना खुद असली नाम बताए और ये टिकट खुद हासिल कर ले। तो मेरा असली नाम अब्दुल वकील अंसारी।
0: अब्दुल वकील अंसारी साहब, अरे वाह।
1: और तखल्लुस मेरा है जौहर कानपुरी।
0: मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि शायरी की दुनिया से पहले के एक मरहला होता है कि आपकी जो तालीम तरबियत, तो आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई और इसकी आखिरी मंजिल क्या थी?
1: तालीम सिलसिले का मामला ये है कि जनाब इब्तदाई तालीम मेरी कानपुर में हुई, जो प्राइमरी की तालीम थी
0: जी।
1: उसके बाद कुछ ऐसे हालात हुए कि फिर तालीम का सिलसिला रुक गया। फिर मैंने बस यूं ही उर्दू से, जिसे मैं किसी खाने में नहीं रखता कि अदीब कर लिया, अदीब माहिर कर लिया, अदीब कामिल कर लिया, फिर मुअल्लिम कर लिया, लेकिन मैं इसे तालीम के किसी खाने में नहीं रखता। आज जो कुछ भी मैं हूँ वो मुताले के वजह से हूँ। हाँ, ये मुताला मेरा दिन रात का रहा है।
0: ये बहुत बड़ी बात होती है।
1: आपको ये बताऊं कि मैं बचपन से मुताले का बहुत शौकीन रहा हूं। ये उस जमाने की बात है, मैं बाबूपुरवा कानपुर में रहने वाला हूं। मेरे बचपन में वहां लाइट नहीं थी, तो हम रात में कहां पढ़ने जाएं?
0: हाँ, सही बात है।
1: बड़े बड़ा मुश्किल मरहला था, तो हम छत पे निकल जाते थे और चांद की रोशनी में पढ़ा करते थे।
0: ये एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, यकीन मानिए।
1: तो इस हद तक, दीवानगी की हद तक शौक था पढ़ने का, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि हम किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचे, लेकिन हमने इस तरीके से तालीम हासिल।
0: मोहतरम, मेरा सवाल ये है कि तालीम के बाद और जिस चीज से आपकी पहचान बनी, यानी शेर व अदब से, शेर व शायरी से, इसका आगाज कब और कैसे हुआ?
1: देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि शायरी कहाँ से शुरू की
0: जी,
1: ये तो मुझे नहीं मालूम
0: जी।
1: कैसे शुरू की ये भी नहीं पता। हुआ ये कि बचपन में मेरी उम्र 7-8 साल की रही होगी, यहाँ से याद है, जो 6-7 साल की उम्र के बच्चे को याद रहती
0: है।
1: तो मुझे ये याद है कि मैं हमारे घर पे अक्सर नशिस्तें होती थी और हम शायरों की खिदमत करते थे, उनको चाय और उनके पान का इंतजाम सब करते थे। उसी में कब ये जहन में बात आ गई और ये जहन शेर मौजू करने लगा, अभी तक हमें नहीं पता
0: जी।
1: और होते होते मेरी उम्र तकरीबन 14-15 साल की हो गई
0: जी,
1: और अभी तक मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं शेर कहता हूँ। हुआ ये कि बाबूपुरवा में एक बहुत बड़े उस्ताद थे शायरी के, उस्ताद अल्लामा हक बनारसी
0: जी। जी,
1: हक बनारसी साहब के बहुत शागिर्द थे
0: जी।
1: एक उनमें से शागिर्द जिनका नाम था फराज कानपुरी
0: जी,
1: वो नात गो तो नहीं, नात खां थे, तो वो उनसे लिखवाते थे हक बनारसी साहब से कलाम, और जलसों वगैरह में पढ़ते थे। मेरे साथ उनका उठना बैठना था, हम शाम को अक्सर उनके साथ बैठते थे। 70 की दहाई का जमाना जो था, वो आपने भी शायद बचपन का जमाना आपका होगा और आपने ये बात महसूस की होगी या देखा होगा कि जो कव्वालियां होती थी उस जमाने में वो ज्यादातर फिल्मी तर्ज पर होती थी। कव्वाल जो थे वो फिल्मी तर्ज पर कव्वालियां गाते थे, और ये चीज वहां से निकल के हमारे जलसों में भी आ गई।
0: हाँ।
1: तो अब जो नात ख्वां हजरात थे वो भी सब फिल्मी धुनों पर पढ़ते थे, नाते नबी पढ़ते थे। अब हुआ क्या कि बनारसी साहब के तो बहुत शागिर्द थे, ये जो फराज साहब थे इन्होंने एक तर्ज लाकर उनको दी साहब को कि इस पर नात कह दीजिए, और शाम को उनका एक दूसरा शागिर्द आ गया और उसने भी वही तर्ज रख दी। کہ اس پر کہہ دیجیے.

0: तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो मैं कह चुका हूँ फराज के लिए, वो बसीद हो गए कि नहीं ये तो बहुत अच्छी नात हुई है, ये मुझे दे दीजिए आप, और बसीद हो गए वो। और हुआ ये कि वो देना पड़ा
1: जी।
0: फिर वो फराज को मालूम हुई, और दूसरी नात उन्होंने दी, जलसे में गए, मुकाबला हुआ,
1: जी जी।
0: मुकाबले में वो नात जीत गई जो फराज के लिए कही थी और दी गई दूसरे को,
1: जी
0: तो फराज से वो नात जीत गई, फराज दूसरे नंबर।

0: फराज से वो नाथ जीत गई, फराज दूसरे नंबर पे आ गए, तो फराज को यहाँ से
1: बहुत बुरा लगा।
0: हाँ बुरा लगा, और उनको
1: और लगना भी चाहिए।
0: तो ये वो हक साहब से नाराज हो गए
1: जी।
0: अब हक साहब तो दुआ सलाम तो रही उनकी, लेकिन कलाम का लेन देन बंद कर दिया उन्होंने कि आज के बाद से मैं आपका कलाम नहीं लूंगा। तो एक शाम जलसा था बाबूपुरवा में ही, अब वो जलसे में फराज कानपुरी साहब ने मुझसे ये कहा कि एक नात आप कह दीजिए, और ये तर्ज दे दी मुझे फिल्मी एक। तो मैंने कह दी नात, उन्होंने वो नात जलसे में पढ़ दी। अब ये चूंकि हक साहब भी उसी महल्ले में रहते थे, उन्होंने वो नात सुनी। अब जब सवेरे हक बनारसी साहब से इनकी फराज कानपुरी की होटल में मुलाकात हुई
1: जी।
0: तो उन्होंने हक साहब ने कहा कल आप नात किसकी पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा कि वो वकील साहब की। तो कहने लगे कौन वकील? उन्होंने बताया कि बारी साहब के साहबजादे। अच्छा मेरे वालिद को जानते थे वो?
1: जी, जी, जी।
0: अच्छा तो उन्होंने कहा शेर भी कहते हैं वो? उन्होंने कहा
1: अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ हमारे सामिन ये चाहते हैं कि आप कुछ अपने अशार हमारे सामिन की नजर जरूर करें।
0: जी मैं जरूर पेश करूंगा।
1: बिल्कुल
0: कुछ मुतफर्रिक अशार सुन लीजिए मेरे।
1: अता करें मोहतरम।
0: तुझसे मिलता हूँ दिल के कहने पर,
1: तुझसे मिलता हूँ दिल के कहने पर, वाह
0: तुझसे मिलता हूँ दिल के कहने पर, जहन तो आज भी मुखालिफ है।
1: क्या बात है भाई, वाह।
0: या एक दूसरा शेर ये कि मुतमईन तू कि तेरे पांव से कांटा निकला।
1: जी
0: मुतमईन तू
1: तेरे
0: कि तेरे पांव से कांटा निकला, हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से आजाद हुए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत ही।
0: मुतमईन तू कि तेरे पांव से कांटा निकला,
1: बहुत ही खूब।
0: हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से आजाद
1: हुए।
0: अब अगर आप इजाजत दें तो चंद शेर बदल के सुना दूं।
1: बिल्कुल अता करें मोहतरम।
0: मतलब ये है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए,
1: जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए,
0: भाइयों से जंग हो तो
1: हार जाना चाहिए। वाह क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब मोहतरम।
0: ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है।
1: हाँ,
0: ये भी एक तरकीब
1: अपना
0: दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पे मरहम लगाना चाहिए।
1: है क्या बात है, बहुत।
0: ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, और दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें।
1: दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें।
0: दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत ही।
0: शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए, और रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास।
1: वाह।
0: तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या।
0: तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए, और ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर
1: लगाना चाहिए। वाह वाह वाह वाह, बहुत ही खूब,
0: बहुत शुक्रिया
1: मोहतरम। आपकी शायरी अक्सर मुआशरे से सवाल करती नजर आती है, ऐसा क्यों? कई बार तो ये भी देखा है कि निजामत की दुनिया में जब कोई भी नाजिम आपको इनवाइट करता है, आपके नाम के आगे एक और लफ्ज जोड़ता है, इनकलाबी शायर मोहतरम जनाब जौहर कानपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं।
0: जी, जी,
1: तो
0: जी, जी,
1: इसके
0: जी,
1: पीछे की बड़ी वजह क्या है?
0: देखिए साहब, मैं बचपन से बहुत हसास रहा हूँ
1: जी,
0: और वो मुझमें आज तक है हसासियत। और शायर होता भी ये है कि शायर समाज की आंखें होता है, समाज में जो कुछ भी हो रहा है सबसे पहले शायर महसूस करता है। तो हमने जिस फतह में आँख खोली वहां पर गरीबी थी, भूख थी, फसादात थे, बेकारी थी, मजलूमियत थी
1: जी,
0: जुल्म थे। तो इन चीजों के दरमियान मेरी तरबियत हुई है, मैंने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, महसूस किया है, खुद भी गुर्बत में बहुत गुजारा है मैंने
1: जी।
0: तो अब मैं शेर कहता हूँ तो मेरे अंदर से वो सारी चीजें खुद ब खुद आती है, मैं सोच के नहीं कहता हूँ
1: जी। जी तजुर्बात,
0: तो ये मेरे मुशाहदात, मेरे तजुर्बात या ये कि जो मुझ पर बीती
1: जी,
0: वो शायरी में ढल के आती है।
1: मोहतरम आपकी तो मेरे ख्याल से दुनिया फैन है, लेकिन आप किसके फैन हैं और आपकी नजर में आपके पसंदीदा शायर कौन है?
0: दौरे कदीम में आप जाइएगा तो आप मीरो गालिब को नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकते, उनके अलावा कोई है भी नहीं।
1: मुमकिन
0: जब
1: नहीं।
0: तक आप मीरो गालिब का जिक्र ही करें या पढ़े नहीं, उनको समझे नहीं, तो फिर आप शायर नहीं हो सकते।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: मौजूदा दौर में आइए तो मौजूदा दौर में हमें अभी कई लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनको समझना भी पड़ता है, जिनको सुनना भी होता है, और ظاہر ہے کہ انہی کے فین بھی ہوں گے ہم
1: جی.
0: میرے پسندیدہ شعرا میں فراق گورکھپوری ہیں
1: جی.
0: فیض احمد فیض ہیں, تو یہ چند لوگ ہیں جن سے میں بہت متاثر ہوں.
1: اچھا یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے محترم, جب مشاعرے پہ پہنچی اور کوئی بڑا شاعر کلام پڑھ رہا ہو, اس کے بعد کوئی شاعر جو چھوٹا موٹا ہو یا جیسا بھی ہو, تو اس کو ڈر لگتا ہے یار ان کے بعد اب مجھے کیا ہی ملے گا. لیکن میں نے آپ کو دیکھا ہے کئی مشاعرے کرتے ہوئے, آپ کے لیے کوئی ٹینشن کی بات ہوتی نہیں ہے.
0: آپ ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہے.

0: बिल्कुल मैं वही
1: इसके पीछे कोई ना कोई वाक्य है मेरा,
0: इसीलिए बात।
1: अब आपने ये बात छोड़ी है तो आप सुन लीजिए, मेरी जिंदगी का पहला ऑल इंडिया मुशायरा। उस जमाने में मैं बंबई में रहता था
0: जी,
1: और लोकल की हैसियत से मदऊ किया गया था मैं
0: जी,
1: और बैरूनी शोरा में वसीम बरेलवी, बशीर बद्र, सागर आजमी साहब, राहत इंदौरी साहब और बड़े बड़े मंदर भोपाली और जितने भी थे, और उसमें निजामत कर रहे थे मोहतरम अनवर जलालपुरी
0: साहब जी,
1: और मेरा पहला ऑल इंडिया मुशायरा था वो
0: जी।
1: तो मैं जाके बैठ गया स्टेज पे, फहरिस्त में मेरा नाम था और मुशायरा चल रहा है। होते होते साहब मुशायरा वहां पहुंचा जहां पर राहत इंदौरी साहब को अनाउंस कर दिया। अब राहत इंदौरी साहब का पढ़ना तो आप समझ सकते हैं कि मुशायरा क्या होगा,
0: बिल्कुल सही बात है।
1: मुशायरा इधर उधर हो गया। अब जब वो पढ़ के हटे तो अनवर जलालपुरी साहब ने मेरा अनाउंस किया,
0: ये
1: मेरा ऑल इंडिया पहला मुशायरा, इतनी बड़ी टीम का मुशायरा,
0: और फिर राहत इंदौरी साहब
1: पर लाके मारा।
0: बिल्कुल
1: हाँ। और साहब मैं आया और मैंने पढ़ना शुरू किया तो हुआ ये कि साहब राहत इंदौरी साहब के बाद मुझे वो दाद तो नहीं मिली
0: जी,
1: लेकिन मैं होड़ भी नहीं हुआ
0: जी।
1: तो फिर वहां पर मैं वहां मतलब पढ़ के और बहुत अच्छी तरीके से मैं वापस आया, मुझे पूरे मजमे ने चीख कर तो दाद नहीं दी जैसे आज देते
0: जी, जी,
1: लेकिन 10-20 लोगों ने मेरी शायरी पर दाद भी दी और मैं आराम से पढ़ के आया तो अनवर जलालपुरी साहब का एक जुमला था, कहने लगे यार मैं तो आपको ऐसे ही समझ रहा था।
0: मतलब अभी अब बैरून की बात कर रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपने सरजमीन हिंद में जो मुशायरे होते हैं और बैरून ममालिक में, इन दोनों मुशायरे में आपको क्या बुनियादी फर्क महसूस होता है?
1: असल में बाहर के जो मुशायरे होते हैं
0: जी,
1: उसमें जो सामेईन आते हैं वो ये मूड बना के आते हैं कि हम मुशायरा सुनने जा रहे हैं। आज का जमाना बदल गया है, आज मुशायरा लोग देखने आते हैं, उस जमाने में सुनने आते थे। तो बैरूनी मुशायरों का ये आलम आज भी है कि वहाँ लोग मुशायरा सुनने आते हैं।
0: बिल्कुल। एक यूनिक सवाल मेरे जहन में आ रहा है मोहतरम कि अगर आप शायर ना होते
1: जी
0: तो क्या होते?
1: मेरा ख्याल है कि मैं अगर शायर ना होता तो भी शायर ही होता। समझे आप? क्योंकि मैं शायरी से पहले बचपन में मैं बिजनेस करता था, मेरे पुश्तैनी काम था, बिजनेस था मेरे कपड़े का दुकान थी, कपड़े का कारोबार था, तो मैं भी उसी में था। एक वाकया सुन लीजिए, तो जब मैंने शायरी शुरू की थी जिस जमाने में मैं दूसरों को कलाम लिख के दे रहा था, अभी मैं हक बनारसी साहब का शागिर्द हुआ भी नहीं था
0: जी,
1: तो मेरे वालिद को मालूम हुआ कि शायरी करने लगे, जब तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं शायर हूँ। तो मेरे वालिद को मालूम हुआ, मेरे वालिद ने कहा कि भाई सुना आप शायरी करने लगे, तो मैंने कहा हाँ शौक है ऐसे ही, कहने लगे सुनाओ कोई शेर, तो मैंने सुनाया, तो कहने लगे हाँ शायरी तो तुम ठीक करते हो, देखो मियां शायरी तो ठीक है लेकिन कभी मुशायरा मत पढ़ना।
0: ताकीद कर दी गई।
1: अब मैं ये 84 में जब आ गया तो कानपुर में रहने लगा, कानपुर में एक जिगर साहब के नाम से एकेडमी, तो वहाँ उठने बैठने लगा, शोरा वहाँ बैठते थे बेकार था, तो वहाँ एक मुशायरा एक साहब ने कहा कि भाई मुशायरा ये है जौहर कानपुरी, 100 रुपए मिलेंगे तो चलोगे? तो मैंने कहा यार मैं कल बताऊंगा
0: जी।
1: तो फिर मैं गया घर, मैंने अपने वालिद से कहा, मैंने कहा कि एक मुशायरा मिल रहा है चला जाऊं? तो मेरे वालिद ने देखा कि अब तो ये बेकार घूम रहा है, तो कहने के जी जाइए, तो मैं चला गया। अब मैं उस मुशायरे में गया तो फिर उसके बाद दूसरा मुशायरा, तीसरा मुशायरा, बनारस का मुशायरा पढ़ के जैसे ही बैठा हूँ वैसे ही मुझे घेर लिया लोगों ने, अरे साहब क्या सुना, पहली बार सुन रहे हैं आपको, हमारा कल मुशायरा घोसी में है, आप पढ़ दीजिए।
0: मतलब पैर का तिल आपका बड़ा होता गया।
1: हाँ पढ़ देंगे। कहने क्या लेंगे? मैंने कहा 400 रुपए लेंगे। और ठीक है देंगे, घोसी का मुशायरा पढ़ा तुम, घोसी वाले हटे ये कह के दूसरे लोग आ गए, अरे साहब क्या है वो तारीफ। और 3 दिन के बाद मेरा मुशायरा यही बनारस में है, पितर कुंडा एक जगह है वहाँ है, वो बहुत मशहूर मुशायरा था, तो वो पढ़ दीजिए आप। पढ़ देंगे, क्या लेंगे? मैं 400 लेंगे। मुझे मालूम ही नहीं था कि ज्यादा भी लेना चाहिए। तो मैंने कहा 400 लेंगे तो ठीक है। अच्छा मैंने घोसी का मुशायरा पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं आ गया बनारस, तो मैं 2 दिन बनारस में रुक गया, और रुकने के बाद मैंने कुछ शेर कहे वहाँ, क्योंकि जो शेर मैं पढ़ चुका था, अब मैंने कहा कि यहाँ क्या पढ़ूंगा। उस जमाने में मेरे पास शायरी मुशायरी की बहुत कम थी, शायरी तो वो थी लेकिन मुशायरे की वाली नहीं थी।
0: जी, जी,
1: तो मैं 2 दिन रुक के वहाँ मैंने शेर कहे
0: जी।
1: फिर मैंने पितरकुंडे का मुशायरा पढ़ा, बस उसके बाद तो फिर मुशायरों की लाइन लग गई,
0: जौहर कानपुरी।
1: फिर तो फिर मुशायरे यूं इतने के मुझे फुर्सत नहीं। अब मैंने बीच में ये चाहा, आपके सवाल पे जवाब पे आ रहा हूँ कि आपको जो सवाल था कि अगर आप शायर न होते तो क्या होते, तो मैं आ रहा हूँ। अब मेरे पास पैसा भी आया लेकिन मसरूफियत थी बहुत, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ काम डाल लूँ, क्योंकि मुशायरों का क्या भरोसा है कब तक पढ़ूँ।

0: पढ़ू
1: क्या रहेगा,
0: बिल्कुल
1: कब बंद हो जाएंगे, तो मेरा एक काम होना चाहिए, बिजनेस के मुशायरे से हटो तो वहां बैठ जाऊं।
0: जी
1: तो मैंने पैसा लगाकर एक कारोबार शुरू किया, दूसरों को बिठाया, वो कारोबार फेल हो, फिर उसके बाद चलता रहा, फिर चलता रहा, फिर मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी डाली, दूसरों को बिठाया,
0: वो भी
1: वो फेल हो गया।
0: जी
1: तो आखिर में मैंने अभी 4-5 साल पहले, कोविड से पहले, एक होटल डाला था, रेस्टोरेंट,
0: जी
1: जिसमें मुझे 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ, वो भी बंद करना पड़ा, क्यों, दूसरों के भरोसे में काम नहीं चला।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मालूम ये हुआ कि अगर मैं शायर न होता तो शायर ही होता, देखिए बाद में फिर आकर मैं शायरी हूँ। अब मैंने तय कर लिया है कि मुझे कोई कारोबार नहीं करना है, बस सिर्फ शायरी करूंगा।
0: आपका रिस्क जो है शेर वादा से ही जुड़ा हुआ है। मोहतरम, चलते चलते जो है कुछ और अपने मुतफरीक अशार और फिर रैपिड राउंड के बाद इस प्रोग्राम के अख्तिताम करते हैं, कुछ मुतफरीक अशार और हमारे सामने को सुना दे।
1: देखिए एक शेर वो सुनाता हूँ।
0: जी जी,
1: वो शेर ये है कि लाश के हाथों में कातिल अपना खंजर दे गया।
0: लाश के हाथों में कातिल अपना खंजर दे गया।
1: लाश के हाथों में कातिल
0: अपना खंजर दे गया।
1: अपना खंजर दे गया, कत्ल का इल्जाम भी मकतूल के सर दे गया।
0: आय हाय, क्या बात है भाई, बहुत खूब।
1: कत्ल का इल्जाम भी मकतूल के, ये इब्ने सफी की देन है, ये इब्ने सफी को बहुत पढ़ते थे उस जमाने में,
0: उनके नावल जासूसी होते थे,
1: इसीलिए तो ये सब उन्हीं के नावल में था। ये शेर दे दिया कि लाश के हाथों में कातिल अपना खंजर दे गया, कत्ल का इल्जाम भी मकतूल के सर दे गया। अब कुछ शेर और सुनाता हूँ मैं आपको, कि एक शेर और है कि पीछे पलट के देखना आता नहीं मुझे।
0: पीछे पलट के देखना आता नहीं मुझे।
1: पीछे पलट के देखना
0: आता
1: नहीं मुझे, मैं सर फिरी हवा नहीं पानी की धार हूँ।
0: वाह क्या बात है, मैं सर फिरी हवा नहीं पानी की धार हूँ।
1: पीछे पलट के देखना आता नहीं मुझे
0: जी,
1: मैं सर फिरी हवा नहीं पानी की धार हूँ। एक शेर सुनिए आप
0: जी, अता करें मतलब।
1: गम के दरियाओ मेरे दिल में बहुत उस्वत है।
0: वाह।
1: गम के दरियाओ
0: मेरे दिल में
1: बहुत उस्त है, मुझ में खो जाओ समंदर की तरह हूँ मैं भी।
0: आय है, क्या बात है, बहुत ही।
1: मुझ में खो जाओ समंदर की तरह हूँ मैं भी।
0: जी,
1: मुझ में खो जाओ
0: समंदर
1: की तरह हूँ मैं भी।
0: वाह।
1: और एक शेर और ये देख लीजिए
0: जी,
1: के तुम भी चार आंसू बहालो चल के उसकी लाश पर।
0: वाह, तुम भी चार आंसू बहालो चल के उसकी लाश पर।
1: तुम भी चार आंसू बहालो
0: चल के उसकी लाश पर।
1: ये न देखो हादसे में मरने वाला कौन
0: कौन है। वाह वाह वाह वाह,
1: ये न देखो हादसे में
0: बहुत खूब
1: मरने वाला कौन है।
0: मतलब बस इसके बाद चलते चलते एक रैपिड राउंड जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, आपको उसको हाँ या ना या अपनी पसंद बताना है बस। और आपका पसंदीदा खाना?
1: बिना गोश्त के खाना नहीं समझना।
0: गजल या नज्म?
1: मुझे दोनों अजीज हैं।
0: पसंदीदा नगमा आपका?
1: मुझे पुराने नगमे बहुत अच्छे लगते हैं।
0: जी, आपकी पसंदीदा अदाकार और अदाकारा?
1: दिलीप कुमार और मधुबाला।
0: वाह। शहर या गांव?
1: गांव में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरूरत शहर में रहने के लिए है।
0: बिल्कुल। गुलजार या समीर?
1: गुलजार।
0: नौशाद या यार रहमान?
1: वो अपने दौर के ठीक थे, यार रहमान अपने दौर के।
0: जगजीत सिंह या पंकज उदास?
1: जगजीत सिंह।
0: बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम के लायक समझा।
0: सामिन, ये थे हमारे आज के मेहमान मशहूर शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब, जिनसे अभी आप कारामद गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। प्रोग्राम की पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157, 7991778157। सामिन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेजबान शम्सुल आरफीन को दें इजाजत, आदाब।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से अभी आप समात फरमा रहे थे आज का उर्दू कार्यक्रम।
3: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे इस संदेश के बाद। आज के कलाकार हैं आराधना सिंह। आराधना सिंह के स्वर में आप सुनेंगे कहरवा। आपके साथ ढोलक पर साथ दे रहे हैं विशाल शर्मा और बैंजो पर साथ दे रहे हैं संजय भारती। इनके स्वर में यानी आराधना सिंह के स्वर में आप सुनेंगे कहरवा लोक संगीत के कार्यक्रम में इस संदेश के बाद।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय

0: स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

श्रोता, लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। आज की कलाकार हैं आराधना सिंह। इस कहरवा के बाद एक और कहरवा ये सुनें।

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थीं आराधना सिंह। आपके साथ बैंजो पर साथ दे रहे थे संजय भारती और ढोलक पर साथ दे रहे थे विशाल शर्मा। इस कहरवा के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए उपलब्ध हैं। DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़, वेव्स OTT और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर 10:44। आइए सुने, सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की कड़ी संख्या 17।

श्रोतों कार्यक्रम का ये पहला गीत है मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें। संतोष आनंद का ये लिखा हुआ गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम बड़े घर की बेटी।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, फिल्म का नाम है राज तिलक, और किशोर कुमार, अलका याग्निक और अनवधा पौडवाल के साथ साधना सरगम की आवाज़ें, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए आपका फरमाइशी कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ डीटीएस डीआरएम, 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है कि शुरू कर दे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आज दिन है गुरुवार और आज के दिन आप सुनते हैं अपने ईमेल संदेशों पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो सखी किरण सिंह, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम का आगाज आज फिल्म के इस गीत से। जगजीत सिंह की आवाज है, सुदर्शन फकीर का लिखा गीत, संगीत जगजीत सिंह का। और इस गीत के लिए हमारे पास जिन श्रोताओं ने ईमेल के जरिए फरमाइश भेजी उनके नाम है पद्मा टॉकेज निफा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह।

अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। पोटियाकला दुर्ग से है संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। हालौद बाजार लाहौद से हैं कमलनाथ पटेल, राकेश पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से हैं किशोर वर्तरकर, शुभम वर्तरकर, पुन्नू वर्तरकर।

ये फरमाइश भेजी। उनके नाम है पद्मा टॉकेज निफा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। पोटियाकला दुर्ग से है संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। हालौद बाजार लाहौद से हैं कमलनाथ पटेल, राकेश पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से हैं किशोर वर्तरकर, शुभम वर्तरकर, पुन्नु वर्तरकर। राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। पिपरिया जिला कबीरधाम से हैं कमल कांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता। सावतपुर छत्तीसगढ़ से हैं ऋषि सेन और रितेश सेन।

आज फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में, और अब आप को हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जॉनी मेरा नाम का ये गीत। इस गीत में आवाज़ें हैं किशोर कुमार की और उषा खन्ना की। गीत इंदिवर का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और पसंद आप सब श्रोताओं की। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने इस गीत को सुनना चाहा। साथ में गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल और जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल और आशुतोष जायसवाल ने भी इस गीत की फरमाइश की। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से इस गीत को सुनना चाहा ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से

पोस्ट दलदार नगर जिला गाजीपुर से अकलू राम और केदार नाम ने भी इस गीत को सुनना चाहा। और रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी और हेमलता गोस्वामी की भी ये फरमाइश आई। ऊंची भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी की भी फरमाइश आई। धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू ने भी फरमाइश भेजी। तो आइए सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गीत।

और अब फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम का यह अगला गीत प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से, आशा भोसले बप्पी लहरी की आवाज़ें, इंदिवर का लिखा गीत, संगीत बप्पी लहरी का। और ये गीत सुनना चाहा है पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा ने। ऑरेंज सिटी नागपुर से इस गीत की फरमाइश की विठल जाधव, अनसुईया जाधव और पवन राजे जाधव ने। और नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू और ज्योति ठाकुर हैं। ग्राम चरौदा बाजार नवापारा, जिला बालौद बाजार चंडीगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। बटिंडा रोड डबलवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से हैं पंजाब राम ठेके, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब, यवतमाल पंजाब से हैं रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जसबीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका बाजार शुभचंद्र से हैं साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।

शिवाजी नगर वडाली देशमुख महाराष्ट्र से हैं राजेंद्र खोबरखेड़ी, शिव सागर खोबरखेड़ी, इंदिरा ताई खोबरखेड़ी, सुनैना दीपाली, स्वराज और तनुज। पलारी रोहासी छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू और जानकी साहू। नगर पंचायत गंगापुर वार्ड नंबर 3 जवाहर नगर से हैं आरजू बानो, आलिया बानो, नेहा बानो, सिमरन बानो, सना बानो, सानिया बानो, मनीषा बानो और गुड़िया बानो। तेलंगाना मोहंगीर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा और आजमीन गुड़िया। गम्हरिया जमशेदपुर से हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से हैं मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल। चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल।

रवि रेजिडेंसी राजकोट से, हेमा जी का और संध्या कुमारी का भी हमें ईमेल मिला। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाई जान और भाई राजकुमार जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। और बोरना आदलपुर गोंगावा से हैं संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। तहसील रोड गंज डुंडवारा से हैं के अचराही, गुड़िया बेगम और वकील प्रेमी के साथ हमाद जमील। परभणी महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रतीश संघई और पूरा संघई परिवार। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से ही अनिल राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकाश राजभर। धानौरी वटाली तहसील नांदुड़ा जिला बुलडाड़ा महाराष्ट्र से हैं भगवान पाटिल और सचिन पाटिल। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और अनुराग मोहन। बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से हैं प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। चंद्रनगर सहारनपुर से हैं कौशल्या जोशी, अजिता जोशी और दुर्गा कुमारी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। धरारा बजड़िया वाराणसी से एनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, सिराजुद्दीन अंसारी, एजाजुर रहमान अंसारी, सलीम आज़ाद अंसारी, इकबाल अंसारी और श्रवण कुमार। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

प्रतिज्ञा फिल्म के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं उम्मीद फिल्म का एक गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, शकील बदायूनी का लिखा गीत, रवि का संगीत और फरमाइश आप सब श्रोताओं की। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामोनिशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बीबी नुसरा खान ये फरमाइश करते हैं ऐशबाग, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम कुंडावला तारापोस लाल रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री, ओमनाथ, सारंग, शिवांग, रोली, अदिति और माताजी निर्मला त्रिपाठी। अहमदनगर बजट यहाँ से बदरुद्दीन अंसारी, मुस्ताक सुलेमानी और सलीम आज़ाद के साथ साथ मल्लू अंसारी ने भी इस गीत की फरमाइश की। राम रतन टॉकीज कुंडलवाड़ी से हैं गंगाधर सावनकर और विजय लक्ष्मी सावनकर। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हैं वसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बड़ी बहू रिम्मी और तनुश्री गुप्ता। खादान कोठी बोरोपारा चौक बेसवेरिया वेस्ट बंगाल से हैं मुन्नी देवी शाह और जयप्रकाश साव के साथ साथ वसंत लाल साव जी। वार्ड नंबर एक पोफाली से हैं जय राम सिंगड़कर, दीशान कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। मजनू का टीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, उमंग मल्लिक, आकांक्षा मल्लिक और माही मल्लिक। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया।

वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टोमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। कुम्हार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुम्हार। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। भाड़बेड़ा मुगलवाल से हैं हेमंत पटौदी, उमंग पटौदी, मोक्ष पटौदी और भरत राम पटौदी के साथ साथ जयंती पटौदी। बाजार रोड मुंगिसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, साबिस्ता पलक, लुबिना यश मंसूरी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छन्नूलाल श्रीवास्तव, अनीता पुष्पा, रंजन साहू और हेमंत नामदेव। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत। पांडर कवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनुश्री बुरांडे। सूरज लोड़े, प्राची लोड़े और एकलव्य लोड़े हैं बलहार शाह से। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, खुशी खर्चे, वंदना खर्चे और स्वाति प्रयाग चौधरी। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से हैं सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। रघुवीर नगर दिल्ली से हैं जफर मोहम्मद शेख, फलक नाज और बेबी अलिस्बा शेख। इंदिरा विहार दिल्ली से हैं बेबी अंसारी, निशा डब्लू अंसारी और जूही परी अंसारी। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

उम्मीद फिल्म का ये गीत। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। कार्यक्रम का ये अगला गीत है सुरेश वाडकर की आवाज में। संतोष आनंद का लिखा ये गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म है प्रेम रोगी। इस गीत को सुनना चाहते हैं पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से तारा देवी विश्वकर्मा, विजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। चांदनी चौक गड़ई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू और रविंद्र के साथ साथ रौनक सेन। सादुल शहर राजस्थान से राजकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ और साई गायकवाड़। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से ही अनंता भगत, करुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत। सादुल शहर राजस्थान से हैं राजकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ ग्राम भोईना पर लाटाबोर्ड जिला बालौद। छत्तीसगढ़ से हैं देव नारायण साहू, योगिता गीतिका चंचल रानी साहू, उमाबाई और गंगाराम साहू। दिल्ली नगलोई से हैं राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, कृष्णा जटोलिया, पूजा जटोलिया, कोमल जटोलिया, आरव जटोलिया। वृंदावन कॉलोनी माहेश्वर से हैं दीपक गुप्ता, सुनीता, विवेक, निशी और आशुतोष। चंद्रा नगर अम्बाला से हैं कृष्णा कुमारी, बीना कुमारी, सोनाली और डोली कुमारी। ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी क्रिस्टी पटवा। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श बेगम, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश शेख, आसिफ शेख और मदरसा गेट भाऊ पूर मड़िया हूँ जिला जौनपुर से ही इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद और अजरा तबस्सुम। अनई जिला बनारस से हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवी। तो आप सबकी फरमाइश पर प्रेम रोगी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

प्रेम रोग फिल्म का ये गीत सुरेश वाडकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। संतोष आनंद का लिखा ये गीत था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और चलते चलते आइए कार्यक्रम में आखिरी फरमाइश भी पूरी कर लेते हैं। मेरी जंग फिल्म का ये गीत किशोर कुमार, एस जानकी और जावेद जाफरी की आवाज़ में है। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांती, तृप्ता कुमारी थांती, डॉक्टर प्रियंका थांती, डॉक्टर प्रशांत थांती, डॉक्टर प्रियम थांती, बेबी वमिका और वाणी थांती। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। उमरी नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं बालू अप्पार गढ़बले, ज्योति शिवसुंदर गढ़बले, आराध्या गढ़बले। हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान के साथ साथ जीशानगा खान। पिहरा बाजार झुमरी तलैया डेहरी से हैं शिवानी कुमार सिन्हा, प्रियंका कुमारी सिन्हा, अभय कुमार सनातनी।

0: ग्राम लसुड़िया तहसील नरसिंहगढ़ से हैं गोविंद, वैष्णो, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश थांती। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से हैं श्री त्रिभुवनाथ मालवी, अनमोल मालवी, श्लोक मालवी और समस्त मालवी परिवार। एंद्रा चौक दिल्ली से हैं अजीम वकार, माहिरा अजीम, नीलिमा अजीम। साहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी, बीबी प्रियंका। कस्बा बिडाला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका। बिजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरन, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरुशब्द राहुल। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा। और चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। आइए जल्दी से आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं ये गीत।
1: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव। So then, which beat would you like? दोस्तों, कौन सा डांस पसंद करेंगे आप?

0: श्रोताओं, हमें खेद है कि किसी कारणवश ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे। और अब कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस यहीं संपन्न करने की दीजिए अनुमति अपनी रेडियो सखी किरण सिंह को। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडिया वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच डीआरएम, 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। अब आइए सुने एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर

0: केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
1: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून हैं, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा

0: होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का

कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी।

0: दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? मां के पास बताओ क्या है, तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो बोली,
2: मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो।
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए।
0: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
2: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है

0: सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी मां है, पर मां क्या है? इस बहार के सामने तेरी मां क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो।
0: हाँ।
1: रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच, तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।

0: रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
0: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
2: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
4: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
4: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
0: ना, ना, ना।
4: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़ी
4: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658
3: 0542227658।
4: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, आज के कलाकार राम शंकर।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने गायन। कलाकार हैं पद्मा तलवलकर, राग है गौड़ सारंग। आपके साथ तबले पर संगति है ओमकार गुलवाड़ी की। हारमोनियम पर हैं गोविंद पटवर्धन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज के कलाकार थे राम शंकर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच डीएम

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थी पद्मा तलवारकर। आपके साथ तबले पर संगति थी ओमकार गुलवादी की और हारमोनियम पर थे गोविंद पटवर्धन। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा पेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त

0: सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आप हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। आइए हम आपको दे देते हैं कार्यक्रम विवरण में संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। और खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना, पहले जानकारी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। ये जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त तो सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार ज्योति उर्फ किरण, पत्नी इंद्रजीत, निवासी है मोगोलीपुर थाना चोलापुर वाराणसी की। ज्योति उर्फ किरण की उम्र है 26 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंगोरा और चेहरा गोल है। ये 9 अप्रैल 2026 शाम से लापता है और साथ में आपके 3 साल की बेटी जिसका नाम पीहू है वो भी है। घटना वाले दिन आपका पहनावा नीले रंग की साड़ी थी और पैरों में चप्पल था। विशेष पहचान के रूप में आपके दाहिने हाथ पर टैटू का निशान है। यदि इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिले तो कृपा कर अपने नजदीकी थाना या थाना चोलापुर वाराणसी को सूचना देने का कष्ट करें। अगली सूचना है सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से ही प्राप्त। इस सूचना के अनुसार नीतू जो पुत्री हैं शिवनाथ प्रसाद की, निवासी हैं ग्राम रौना खुर्द थाना चोलापुर वाराणसी की। नीतू की उम्र है 23 वर्ष, लंबाई 5 फुट के करीब है, रंगे हुआ है, चेहरा लंबा है। ये 30 मार्च 2026 दिन में 3 बजे से लापता है। घटना वाले दिन आपका पहनावा सफ़ेद रंग का सलवार सूट और पैरों में चप्पल था। यदि इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना चोलापुर वाराणसी को सूचना देने का कष्ट करें। खोए व्यक्तियों के संबंध में आज की ये सूचना बस यही संपन्न होती है और कार्यक्रम विवरण में प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स का प्रसारण होगा शाम 4 बजे से। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 18वीं कड़ी आज आप सुनेंगे रात 8 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा गायन। कलाकार होंगे उस्ताद विलायत हुसैन खान। आपकी फरमाइश पूरी होगी आपकी पसंद कार्यक्रम में रात 10 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का आनंद लीजिएगा अंजुमन कार्यक्रम में रात 9:30 पर। और दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा कहकशा। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे चर्चा और बातचीत। बातचीत का विषय होगा व्याते समय पशुओं की देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर मनोज कुमार से होगी सतीश कुमार यादव की बातचीत, साथ ही आरंदा सिंह का गाया लोकगीत भी। इनके गाय लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, सूचना और जानकारी। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में आज सुनिएगा बघेली लोकगीत। और अब से थोड़ी देर बाद यानी दिन में 1:15 पर ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम अंगनैया में गीत संगीत के साथ साथ सुनिएगा बातचीत। विषय होगा गर्भाशय गांठ की समस्या और इसकी समुचित चिकित्सा। इस विषय पर बातचीत होगी डॉक्टर एकता तिवारी से। कार्यक्रम विवरण में ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1:10 होने वाले हैं। इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी देर में।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 101 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि उन्नाव को तरक्की की दौड़ में पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर की तामीर के लिए ज़मीन तहवील की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अब तेज़ी के साथ यहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी और नौजवानों को यहीं रोज़गार मिलेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के जरिए मुंतखब ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकरीरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में हिफाजत के बेहतरीन माहौल में मईशत को रफ्तार मिली है। वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों में यूपी की मईशत और फीकस आमदनी में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है।
1: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ डिवीज़न के अवामी नुमाइंदों के साथ माली साल 2026-27 के लिए महकमा तामीरात आम्मा के एक्शन प्लान के बारे में मीटिंग की। इस मौके पर वजीर आला ने हिदायत दी कि मौसूल होने वाले तजावीज़ को तरजीह दी जाए और जल्द अज जल्द एक्शन प्लान हुकूमत को भिजवाया जाए ताकि रवां माह के आखिर तक उनकी मंजूरी दी जा सके और काम शुरू हो सके। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत मफाद आम्मा के हर मसले के तई हसास है और अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ और मुतालबात को तरजीही बुनियाद पर नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़्यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के असूलों पर मबनी गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल ज़िक्र तरक्की की है। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। आज हम नक्सलिज्म के खात्मे और नक्सल से मुतासर इलाकों की तरक्की के लिए हुकूमत की अहम कोशिशों पर बात करेंगे।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के 59 जिलों में 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए खसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी है। इस इम्तिहान में तकरीबन 3 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने का इम्कान है। वजीर आला ने कहा कि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड दिखाने पर रियासती ट्रांसपोर्ट की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुहर्रम के पहले दिन कल लखनऊ में बड़े इमामबाड़े से रवायती शाही जरी का जुलूस गम और अकीदत से निकाला गया। जुलूस अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता हुआ रात गए छोटा इमामबाड़ा पहुंचा। जुलूस में आज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने जुलूस का इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी के भी वसी इंतजाम किए गए थे। बैनुल अक्वामी योगा डे के मौके पर

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारी ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगने या कार्यक्रम सुनने वाली सब बहने लोगन के नमस्ते, और हम कहीं गौरी तोहरों के नमस्ते हो।
1: नमस्ते दीदी, तोहके भी नमस्ते, और कार्यक्रम सुने वाली सब बहिन लोग के भी नमस्ते।
0: घाम तो बड़ा जोर का हो, लगत है कि दऊ धरती पे आके बैठ गए हुआ, हमन के बदे जगह नहीं छोड़ले हुआ।
1: एकदम सही कहत हो दीदी, मने इतना मन उजा जात हो, घर से बाहरे निकले के एकदम में मन नहीं होता। और देखो हो, घरहू में रहत है ना, तो भाई जोन बिजली बत्ती है, कभी आवत है कभी जात है, यहू से मन उजा जाता। आदमी हाथे का पंखा कितना झले समझ में ना आवता। और सबसे बड़ी दिक्कत तब होता जब रात होता, जब राते में लाइट कटत है आ लइकवा उठ उठ के बैठ जात हम, गर्मी लागत।
0: देखा हो, अब जैसे जैसे सुविधा रही ना, तो ओकर आगे पीछे जौन हानि लाभ उकुर तो सही के पड़े। भाई पहले इतना सुविधा नहीं रहे, लेकिन पेड़ पालो इतना रहे ना कि मनई गोलिया के वही के तरे बैठ जाए, तो कौनो कूलर एसी ओकर मुकाबला नहीं कर सके।
1: हाँ
0: हाँ,
1: एकदम सही
0: बाकी अब
1: बात।
0: तो कमरा बंद कई कई लोगन एक ठे चलाए देत हुआ, कूलर चलाए देत हुआ, एसी चलाए देत हुआ, तो जबले चली तबले ना। अब भाई ओकरे चक्कर में इतना घर परिवार बढ़ कह, अगर आ सब घर परिवार बदे इतना बड़ बड़ मकान बिल्डिंग तनवावत जात हो। आ एकरे बदे कुल पेड़ पालो का तो जगह जियान कैल जात हो। हाँ,
1: हाँ
0: तो
1: दीदी।
0: का होई जितना सुविधा ले बु लोगन, तो ओकर दुष्परिणाम भी तो भोगे के पड़ी।
1: एकदम सही बात कहत हो दीदी। आ जवन ई बात कैलू है ना कि लोग अपने अपने घर में कूलर पंखा लगा लगा तो बैठ जात हम हो, लेकिन कहे खातिर तो उन लोग के लागत कि हम बहुत बढ़िया से बानी, लेकिन जवन अंदर से उनके सुकून चाहिए वो सुकून नहीं मिला था। काहे ना मिला था कि एगो समय रहे कि जब घरे के बरामदा में लाइट कट जाए तो सब केहू बिटुरा जाए, हाथे में बेनिया ले ले व सब केहू बैठ के डोलावे। आ बतियावत बतियावत इहो ना बुझाए कि कितना गर्मी लगत है या कितना रात बीत गई।
0: सही बात कह तू। ओकरे पर सोने पर सुहागा तो हो गई, लेके जो छोटका मोबाइलिया आ गए हैं। हाँ, हाथे में सबके घरे घरे देखबू ना, तो घरे में चाटे परानी हो, तो चारों के हाथे में मोबाइल रही। एक के कमरा में चार लोगन बैठल हुआ, लेकिन सब अपने मोबाइल में अजुराइल है, केहू के केहू से मतलबे नहीं है। वही में केहू का कपारो मुड़ फाट जाए ना, तो दूसर का के पता न चल के कर कपार फाट गई।
1: छोट छोट लइका हम उ लोग के देखा तो मोबाइल का आदत लग गई है, खाना खाए बदे चाहे ऐसे ही घर में बूढ़ पुरानिया बना ओके तो कुछ बुझते नहीं हम कि हाँ तनी चली दादा दादी लगे बैठी। आ एगो समय रहे हमनी के जब छोट छोट रही जा, रात होके तो जाके दादा दादी की यहाँ बैठे ये कहो गो कथा सुनावे लो, खिस्सा कहानी कहे लो, सुन के इतना आनंद आवे, मतलब समझा कि राजा रानी के जब कहानी सुनी जा तो ऐसा लागे कि सही में राती का परी अबे करी है, और जोन कह मांगल जाये तो मिली।

0: ये चाहिए हमने
1: ई
0: के।
1: बात तो बहुत पते का कहलू ह गौरी। आई तो लड़कन बच्चन का बात कहत हो ना, इहाँ तो मनसेधु मोहर मेहरारून का जौन बात है ना, ई मनसेधु मेहरारून अगर एक कमरा में हुवन तो वो अपन मोबाइल चलावत हैं, उन अपन मोबाइल चलावत हुवन, माने पते नहीं है कि घरे में मियाँ बीबी हूँ।
0: एकदम सुना सुना हो जाला दीदी जब ऐसा स्थिति आवेला, काहे से कि जब वो दोनों लोग अपने अपने में व्यस्त रहिया तो ना एक दूसरे के सुख दुख के जनिए, ना हंसी खुशी के जनिए। आ एगो समय रहे कि आदमी इंतजार करे कि हाँ हमार घर इतनी कब खाली हुई है, माँज धो के हमरे लगे हैं यहाँ, तो बैठ के कुछ तनी हंसी मजाक कर लेवल जाए, कुछ बात विचार हो जाए।
1: बिल्कुल सही बात कहत तो गौरी। आ इहे तो हो गई ला, पहले के में अब के में ये अंतर हो गई ला कि अब सुविधा तो सब कुछ को हो गई ला। ठंडा पानी पिए के मिलत था, पंखा कूलर एसी मिलत था, सबके सब तरह का सुविधा मिलत था, आराम मिलत था, लेकिन फिर भी मनई कहत था ना कि हम बहुत अकेल है, माने हमार दुख तकलीफ समझे वाला केहू नहीं है। यही में ऐसा ऐसा घटना भी जौन होता कि मनई अपने आप के खत्म कर ले था, ई कुल घटना भी आज ही कल ढेर का सुनने का मिलत
0: हाँ
1: था।
0: दीदी सही बात है, लेकिन एकर एगो मेन कारण ई है कि आदमी के जो आपसी लगाव है वो खत्म हो जाता। कहे खातिर तो लागत है कि घर परिवार में सब कोई मिलजुल के है, लेकिन कुछ बात ऐसा ना कि मोबाइल के द्वारा पता चला था। आए गांवे नगर में का होता, देखो ऐसा समय आ गई बा ना कि एगो तीज त्योहार का जब मौका रहे तो आदमी घरे घरे जाए मिले। अब ई बा कि मोबाइल से संदेश भेजा जाता, बधाई दिया जाता, क्योंकि घर में छोट लड़का होता तो ओहू का मोबाइल से मुबारकबाद दिया था। एगो समय रहे कि आदमी घरे जाए मिले, तरे उकरे घरे जेला के बाद मर मीठा भी मिले, कितना नीक लागत रहे। हाँ और जो
1: सही बात हो
0: और
1: तब हो। यही से तो कहल जाला ना कि आजकल का जो समय है ना, ओमन ई बहुत बड़ी जरूरत है कि मनई एक दूसरे की जोड़ के रहे, तनी एक दूसरे की पहचाने, एक दूसरे के संगे सुख दुख बांटे, और सब केहू का लगाव एक दूसरे से हो ना, तो ई समस्या से हमन निजात पा सकीला। और एकरे साथे साथे जोन तू कहलू है ना कि केहू के दुआरी जा तो पानी पिए के मिलेला, मीठो खाए के मिलेला, तो पानी पिए के बात पे बहुत निक का बात किया लागे, लेकिन पानी तो पिए के बहुत लोगन देवेला, लेकिन 5 गो अंगुरी बोर के अगर केहू पानी पिए के दे ना, तो हम तो कहीं के घरे तो बिना पनिए पिए चलिए अब के चला।
0: एकदम सही बात कहो दीदी, मतलब कहे का मतलब ये है कि पिए वाला पानी स्वच्छ रहे, जब पिए वाला पानी स्वच्छ रही तो मनई के स्वास्थ्य भी स्वस्थ रही।
1: अजानत हो पिए वाला पानी स्वच्छ रहे, एकरे बदे वो जगह भी साफ सुथरा रहे के चाहिए, पानी वाला जोन बर्तन हुआ साफ सुथरा रहे के चाहिए, साथ में हमेशा ढक तोप के वो रखल रहे। भाई पानी निकाले के है जेकरे घरे घड़ा सुराही है, तो वो तरह का बर्तन रखे कि बर्तन से निकाले पानी,
0: निकालने
1: ई नाही कि हाथ बोर के गिलास बोर के कटोरिया बोर के पानी निकाल के दे देलिन तो वो पिए में ओके भाई दुनिया भर का बीमारी परेशानी
0: आ
1: हो
0: देखा
1: सकेला।
0: दीदी बीमारी तो हो जाए, लेकिन ई सब चीज का असर ना छोटो घरवा के जो छोट छोट लइका वहाँ ऊ लोग पे बहुत ज्यादा असर पड़ेला। तो जब खुद ना सफाई रखबा तो लइको उहे कुल देख के सीखिए।
1: तो भाई ऐसा न करें, पिए वाला पानी जौन है उ साफ सुथरा रखें, केहू मेहमान के भी देत हुवन त साफ दें पिया में, ऐसे का हो कि बीमारी से परेशानी से हमेशा उ बचल रही है। आ देखा बतियावे लगना तो बतियावे बतियावत ई पता नहीं चलेला कि अपने कार्यक्रम में बहुत कुछ है, भाई गीत गवनई भी है, बतकही भी है निमन का, लेकिन ई संदेश भी तो है, एहू के सुन लिहल जाए फिर आगे बतकही होई।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो।
6: 054-222-7658।
4: ओ
7: 054-222-7658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
7: 054-222-7658।
8: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए एनसीईआरटी द्वारा

0: प्रायोजित कार्यक्रम।
1: देखा हो सनेश से भी कुछ जानकारी मिलेला। सनेश तो हो गई, लेकिन हम लोगन कहत रही ना कि अपने कार्यक्रम में जानकारी का बतकही भी लेके आयल है गीत गवनी भी, तो जानकारी का बतकही पहले सुनवा दिहल जाए तो कैसन रही?
2: हाँ दीदी, पहले बहिन लोग के सुनवा दिहल जा। गर्भाशय गांठ की समस्या और इसकी समुचित चिकित्सा जे डॉक्टर एकता तिवारी से बात कैले हैं शिखा श्रीवास्तव, तो बहिन लोग के सुने।
1: श्रोता बहनों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में आई हैं डॉक्टर एकता तिवारी जी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ESIC हॉस्पिटल पांडेपुर वाराणसी में और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, और आप लोगों को जानकारी देंगी कि गर्भाशय में गांठ की समस्या क्यों हो जाती है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो डॉक्टर एकता तिवारी जी, आपका अपने कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
3: नमस्कार।
1: अच्छा, आप बहनों को पहले ये बताइए कि ये गर्भाशय में गांठ की समस्या होती क्या है?
3: देखिए, गर्भाशय में गांठ की समस्या और कोई समस्या नहीं है, जो हम अल्ट्रासाउंड में नॉर्मली देखते हैं फाइब्रॉइड या उसे लियोमायमा बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, इसे ही गर्भाशय की गांठ है, जो कि काफी सारे लक्षणों के साथ मरीज हमारे पास अस्पताल में आता है।
1: तो ये किन में हो जाती है?
3: देखिए, महिलाओं में ये समस्या 15 से लेकर 45 की उम्र तक ज़्यादा दिखाई देती है। जो महिलाएं हैं जिनका महावारी चल रही होती है, उनमें ही दिखाई देती है।
1: अच्छा, तो कैसे पता चले कि हमको ये फाइब्रॉइड की या गांठ की समस्या हो रही है?
3: महिला हमारे पास आएगी, सबसे ज़्यादा कॉमन दिक्कत क्या होती है कि हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है महीने के दौरान में, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कुछ महिलाएं जिनको बच्चे चाहिए होते हैं उस टाइम पे आती हैं कि हमें बच्चे होने में तकलीफ़ हो रही है। मेन तो यही दो दिक्कतें होती हैं। और अगर बच्चेदानी की जो गांठ होती है वह आगे की तरफ काफ़ी बड़ी है, तो हो सकता है उनको यूरिन करने में भी कुछ प्रॉब्लम हो, या अगर पीछे की तरफ है तो बॉवल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है।
1: अच्छा, क्या कारण होते हैं, क्यों ऐसी समस्या महिलाओं में देखने को मिलती है?
3: देखिए, पहला तो मेन कारण होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह से होता है कि एक हार्मोन नाम हमारे बॉडी में होता है ईस्ट्रोजन, जिसकी मात्रा बढ़ने से हमारे गर्भाशय में गांठ बनने लगती है। दूसरा जेनेटिक होता है कि कभी उनकी माँ को भी रहा होगा, जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी वो बच्चों में दिखाई देती है।
1: जी जी,
3: दो मेन कारण होते हैं इसके।
1: अच्छा,
3: और तीसरा एक कारण जो हम आजकल देख रहे हैं कि जो आधुनिकता हो रही है, हमारी लाइफस्टाइल हो रही है, खान पान जो हो रहा है, उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों में ये चीज़ें नहीं दिखाई देती थी। और दूसरा ये कारण हो रहा है कि लेट मैरिजेस हो रही हैं। लेट मैरिज की वजह लोग 30 साल के बाद ही बच्चे ले रहे हैं, तो जो बच्चादानी है उसमें ईस्ट्रोजन का हार्मोन लेवल बढ़ जा रहा है, तो गांठें बनने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है।
1: जब बहुत महिलाएं जब जाती हैं इस तरह की समस्या लेकर के डॉक्टर के पास, तो वो सर्जरी के बारे में कहते हैं, सलाह देते हैं, तो उनके मन में एक भ्रम होता है कि अगर हम सर्जरी करा लेंगे तो आगे समस्या हो सकती है। तो सर्जरी के बारे में आप क्या सलाह देंगी कि इसका इलाज क्या सर्जरी है?
3: देखिए, अगर हम गर्भाशय में गांठ है तो उसका इलाज सिर्फ सर्जरी, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी की आवश्यकता भी होती है। डिपेंड करता है कि गर्भाशय की गांठ का जो साइज़ है उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे है, कौन से हिस्से में गर्भाशय के वो गांठ है। पहले अगर साइज़ अगर हमारा 3 to 4 centimeter से कम है, तो आपको मेडिकली भी मैनेज करते हैं, दवाई देके उसे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे कि वो बढ़े ना, बट हाँ, दवाई से एकदम गलेगी नहीं वो गांठ। दूसरा है कि अगर मान लीजिए 4 centimeter के ऊपर है, तो मरीज को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो उसके हिसाब से हम उसको सर्जरी का ऑप्शन दे सकते हैं। और दूसरा है लोकेशन, जैसे गर्भाशय की 3 layer होती है, अंदर की मुकोजा होती है, सब मुकोजा अगर फाइब्रिड होता है, और दूसरा होता है इंट्राम्यूरल जो मांसपेशियों के बीच में होता है, तीसरा होता है बाहर की तरफ सब सिरोसल फाइब्रॉइड, जो कि सब म्यूकस फाइब्रिड होता है उस वो ब्लीडिंग ज़्यादा कराता है। तो अगर मान लीजिए कोई महिला है जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही है, तो वो उसमें दिक्कत करता है, तो हम उसे निकालने का बोलते हैं कि आप उसकी सर्जरी करा लीजिए। बट अगर कोई ऐसी महिला है जिसका बाहर की तरफ में फाइब्रॉइड है और उसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा, 4 centimeter से कम है, तो हम उसे बोलते हैं कि ठीक है, आप 3 to 6 months में अल्ट्रासाउंड करके रिपीट करके देख लीजिए, या कोई दिक्कत होती है तो अपन उसके हिसाब से इलाज करेंगे।
1: अगर अंदर समस्या है वो सर्जरी करा लेती है और अभी उसके बच्चे नहीं है, वो गर्भ धारण करना चाहती है, तो क्या गर्भ धारण में भी समस्या हो सकती है?
3: देखिए, फाइब्रॉइड सिर्फ इनफर्टिलिटी नहीं कराता, जैसे अपन बोलते हैं कि बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, कि गांठ है, उसके कारण बच्चे नहीं हो रहे, सिर्फ एकमात्र कारण फाइब्रॉइड नहीं है। हाँ, अगर हमारे सारे कारण सब नॉर्मल हैं, नले सही हैं, अंडे दाने के अंडे सही हुए हैं, साथ में पुरुष की सारी संक्राणु सही हैं, अगर हमें विकल्प नहीं दिखता तो ही हम उसकी सर्जरी करने बोलते हैं। कि हाँ, अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है तब तो डेफिनेटली हम बोलेंगे 4 सेंटीमीटर के ऊपर है, बट अगर छोटा फाइब्रॉइड है तो अपन सो अगर कोई और फैक्टर हमें दिख

0: रहा है कि बच्चे दाएं नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में फिर अपन इवैल्यूएट करेंगे कि आगे क्या करना है।
1: अच्छा, लेकिन गांव में हमारे जब कभी किसी को इस तरह की समस्या हो जाती है तो महिलाएं ऑपरेशन कराने से बहुत घबराती हैं, और वो ये कहती हैं, उनका ये मानना है कि उसमें जो दवाएं चलती हैं वो दवाओं का ऐसा असर होता है कि फिर वो कभी बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं।
0: नहीं देखिए, ये हम एक एक स्टेटमेंट में नहीं बोल सकते कि अगर ऑपरेशन हो गया तो बच्चे नहीं होंगे।
1: जी
0: कभी कभार देखिए ऑपरेशन के अपने कॉम्प्लिकेशन हैं,
1: जी
0: उसके भी अगर बाद में मान ली हमने ऑपरेशन किया, आसपास जो बच्चेदानी के अंदर है उसमें कभी के एडिशंस हो जाते हैं, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं, वो बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो भी हो सकती हैं। तो हम बट ये नहीं बोल सकते कि ऑपरेशन करा लिया तो बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी इनफर्टिलिटी पेशेंट हैं जिसमें ये पाया जाता है कि फाइब्रॉइड निकालने के बाद कंसीव करते हैं पेशेंट। बट
1: अच्छा
0: हाँ, उनको एक समय दिया जाता है, इसके बाद मान लीजिए कोई पेशेंट है 35 की एज में, तो उसको सीधा फिर IVF की तरफ लेके जाया जाता है कि जल्द से जल्द उसकी प्रेगनेंसी रुकाई जाए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे, बच्चेदानी को खाली छोड़ेंगे, बच्चा नहीं आएगा, उतने चांसेस ऑफ रिकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सर्जरी करा ली तो फाइब्रॉइड दोबारा नहीं आएगा, दोबारा भी आने के चांसेस रहते हैं।
1: अच्छा, ये लंबे समय तक अगर शरीर के अंदर है और इसका संपूर्ण इलाज नहीं हुआ है तो क्या ये कैंसर का भी रूप ले सकता है?
0: ये सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट आता है कि हमारे गांठ है, हमारे बच्चेदानी निकाल दीजिए कि कैंसर हो जाएगा हमें। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अपने आप नहीं गलेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने छोटा है तो आपने दवाई दी कि बढ़े ना, बट
1: जी
0: दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है कि आपने जैसे दवाई देना बंद किया वो फिर से ग्रो करने लगेगा। अगर वो बहुत बड़ा हो जाता है तो अपन निकाल देते हैं, बट कैंसर का खतरा less than 1% है कि इसमें कैंसर आगे जाके, अगर आपने बहुत छोड़ दिया, कुछ और दिक्कतें आई, less than 1% चांस है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम कैंसर में कन्वर्ट होता है, बहुत ही
1: अच्छा
0: नेग्लिजिबल है, नहीं होता।
1: अच्छा, कितने समय तक का, मतलब कितना छोटा होना चाहिए ये गांठ की उसका दवा से इलाज हो जाए?
0: less than 4 सेंटीमीटर,
1: अच्छा, 4 सेंटीमीटर
0: चार सेंटीमीटर
1: से।
0: से कम में अपन उसको छोड़ते हैं। वैसे हम 3 सेंटीमीटर तक ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मानते हैं, बट अपन की गाइडलाइन के हिसाब से हम 4 सेंटीमीटर तक वाले को कंजर्वेटिवली रखते हैं, ऑपरेट नहीं करते अंटिल अनलेस किसी को इनफर्टिलिटी का ही इश्यू हो रहा है।
1: जी
0: आगे जाके मान लीजिए उनका IVF कराना है, कुछ ऐसा प्रोसीजर है, तो हम क्योंकि अगर IVF में मरीज पैसे लगा रहा है तो उसमें वो चाहेगा नहीं कि कोई भी चांस छूट जाए कि उसका प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू ना हो।
1: महिलाओं के साथ अगर जो किशोरियां होती हैं तो उनमें जो मासिक धर्म की अनियमितता है ये तो कॉमन सी मानी जाती है,
0: जी
1: तो अगर ये फाइब्रॉइड या गांठ की समस्या के साथ अगर ऐसा देखने को मिलता है तो वो कैसे पहचाने कि हमको, हम इस समस्या की तरफ जा रहे हैं?
0: देखिए, आज के समय पे जो आप किशोरी अवस्था बोल रही हैं, एडोलेसेंट जो ग्रुप होता है,
1: जी
0: उसमें बच्चेदानी की गांठ से ज़्यादा PCOD की समस्या ज़्यादा आ रही है,
1: जी
0: जो
1: जी
0: कि अंडाशय की प्रॉब्लम होती है।
1: जी
0: जब शुरू में उनको 12-14 साल के लगभग उनका महीना आना शुरू होता है, तो उस टाइम पे जो दिमाग से एक्सिस निकलती है, हमारे हॉर्मोन्स निकलना शुरू होते हैं कि माहवारी वाले, वो उतनी मैच्योर नहीं होती है, तो उनका शुरू में 1-1.5 साल महीना ऊपर नीचे आना ये नॉर्मल माना जाता है। अगर उसके बाद भी दिक्कत हो रही है तो हम उनका अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि गांठ कहाँ पे है, अंडाशय में तो नहीं है, क्योंकि जो दिक्कत फाइब्रॉइड की होती है वो सिर्फ इसलिए होती है बच्चेदानी के अंदर, जिनका पीरियड्स बहुत डिले हो रहे हैं और उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी लेट हो रहा है, जैसे शादियों में लेट हो गया,
1: जी
0: मान 30 साल तक बच्चेदानी खाली है। किशोरी अवस्था में इतना जल्दी फाइब्रॉइड के चांसेस बहुत कम होते हैं, होते हैं, तो किसी भी आज के समय में है कि हार्मोनल डिसबैलेंस इतना हो गया है कि फाइब्रॉइड भी यंग फीमेल्स में देखा जाता है। अनटिल साइज बहुत बड़ा नहीं है तो हम उसमें इंटरवेंशन कुछ अंदर सर्जरी वगैरह नहीं करना चाहते
1: जी
0: हैं।
1: जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। अच्छा, एक प्रश्न और जो सुनने में आता है, आसपास देखने को मिलता है हमें, कि महिलाएं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो कहती हैं कि जब किशोरियों में मासिक धर्म की अनियमितता हो रही है और वो कोई दर्द की दवा खा ले रही हैं या उनको बहुत दर्द हो रहा है मासिक धर्म के दौरान और वो दर्द की दवा खा लेती हैं, तो वो दवा का साइड इफेक्ट होता है जो गांठ का रूप ले लेता है, तो ये क्या भ्रम है या सही है?
0: देखिए, वैसे भी अगर मासिक किशोरी अवस्था में मासिक शुरू होता है तो हम शुरू के 1.5-2 साल बिल्कुल ही दवाइयाँ लेना मना करते हैं।
1: जी
0: बहुत सारे होते हैं आयुर्वेदिक की तरफ चले जाते हैं कि महीना सही नहीं आ रहा, समय पर लाने के लिए आयुर्वेदिक में जाके कुछ दवाई ले, बट उससे क्या होता है, अंडाशय में जो अपने अंडे होते हैं उस पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो सारी दवाइयाँ काफ़ी स्ट्रांग होती हैं जो कि एक तरह से नुकसान पहुँचाती हैं बच्चेदानी को और अंडाशय दोनों को। और जो
1: जी
0: महिला होती है उनके पास एक सीमित अंडकोश में अंडे होते हैं, जो कि जब वो पैदा होती हैं वो लेके आती हैं और जब तक महामारी चलती है तब तक ही को रहते हैं।
1: अच्छा, किसी को ये समस्या है गर्भाशय में गांठ की, तो क्या इसका कोई प्राकृतिक उपचार भी है या सीधे उन

0: को दवा और सर्जरी की तरफ ही बढ़ना चाहिए।
1: पहले तो हम ये बोलेंगे कि आज के समय पे जो लाइफस्टाइल हो गई है कि लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, चलना फिरना बंद कर दिए हैं, टीवी
0: जी
1: पे लगे हुए हैं, खाने में जंक फूड, पिज्ज़ा बर्गर जो चल रहा है वो तो मेन चीज़ है। बच्चों को उनसे दूर रखना चाहिए, स्पेशली लड़कियां जब इस एज में होती हैं 14 साल के बाद, 21-22 तक, जब उनका मेन हार्मोन इम्बैलेंस होता है, उस टाइम पर उनको अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। खान पान में अपने हरी सब्जियां खाएं, आजकल बच्चे सब्जियां ही नहीं खाना चाहते,
0: जी
1: दूध नहीं पीना चाहते, आप उनको न्यूट्रिशन की चीज़ दीजिए वो नहीं खाना चाहते, वो सिर्फ टेस्ट के पीछे जाना चाहते हैं
0: जी
1: कि जहाँ पे
0: जी
1: उनको टेस्ट मिल रहा है वो चीज़ खाएंगे। तो वो सब चीज़ों का मेन ध्यान दें। वॉकिंग पे जाएं, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे हम बोलते हैं, तेज तेज चलना। आप जिम नहीं जा सकते, योगा नहीं जा सकते, एटलीस्ट अपने घर के बगान में टहलिए, 150 मिनट हफ्ते में एक दिन टहलिए। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज का ही चांस नहीं होगा, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ही नहीं होगा, तो आपको बच्चेदानी में गांठ आने की ही संभावना कम हो जाएगी।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई है। आपके पास तो बहुत तरह के मरीज आते होंगे, तो किस किस तरह की शिकायतें लेकर आते हैं?
1: देखिए, गर्भाशय में गांठ की तो आते ही हैं मरीज, और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज आजकल बहुत कॉमन हो गया है
0: जी
1: कि ओवरी में सिस्ट है, किसी का पॉलीसिस्टिक के साथ में एंडोमेट्रोटिक सिस्ट भी आता है।
0: आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चलते चलते हमारे श्रोता बहनों के लिए क्या संदेश है?
1: और मैं ये बोलना चाहूंगी, पहली चीज, आप लोग जब अल्ट्रासाउंड अपने हिसाब से जाके कराते हैं डॉक्टर के परामर्श के बिना, कि पेट में दर्द हो रहा है, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट बता देता है कि आपके बच्चेदानी में गांठ है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप उसको गांठ को कैंसर ना समझें और सीधा जाके अपने बच्चेदानी निकालने का निर्णय खुद ना ले लें। एक बार अपनी गायनी से, जो भी नियर बाय क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें कि वह एक्चुअली कैंसर है या फिर छोटी सी गांठ है जो कि सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल की जा सकती है।
0: आपकी बात से ये प्रेरित हुए हैं कि महिलाएं ये समझें कि हम लोगों को प्रकृति के साथ रहना है, नेचर
1: हाँ
0: के साथ रहना है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसको हम लोग संतुलित कर सकें और स्वस्थ रह सकें और इस तरह की समस्या की ओर बढ़े ही नहीं। तो
1: जी
0: डॉक्टर एकता तिवारी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और गर्भाशय में गांठ की समस्या से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारी श्रोता बहनों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: देखा हो गौरी, अभी बहन लोगन ई नीके का बत कही सुनत रलिन हा कि गर्भाशय गांठ का समस्या का होला और एकर पूरी तरह से इलाज कैसे करवावल जा सकेला, डॉक्टर एकता तिवारी से हम बतियावत रही है। देखा, जानकारी का बात है बहनी लोगन, ई जानकारी के गठिया के रख लें और जागरूक रहें। कोनो भी समस्या का इलाज तब्बे होला जब बहनी लोगन जागरूक रहें।
2: सही बात कहलुआ दीदी, बहुत निक का जानकारी रहला। अगर बहन लोग मन लगा के सुन ले हुई हैं तो बहुत कुछ ना लोग के फायदा हो ये बात से। और देखा कितना निक के बात ई बतौनी है कि मतलब अपना प्रकृति पर्यावरण से जरूर जुड़ के रहे के चाहे, उ बढ़िया से बढ़िया बीमारी के दूर करे में मदद करेला।
0: बिल्कुल। आ देखा भाई, मन का बात बहनी लोगन के तो हो गई, और बहनी लोगन और का सोचे थे निकरे संगे संगे हमार मन का कहत है ई के बूझी।
2: अरे दीदी, हम बुझत हैं कि तोहार मन का कहता आ तोहरे ना ही, संगे संगे बहनियों लोग इंतजार करत हुई जा कि लोग खाली बतियाइबे करी जा कि कुछ मनो मनसाइन करी जा। तो ये गीत सुने जा जेठ के महीनवा।

0: नीके का गीत सुनवलू हा। गौरी या बहनी लोगन के भी निक लगल होई। आ देखा ना, मौसम के हिसाब का गीत गौनी हो जाएला ना, तब मन तर हो जाएला।
1: सही बात कहलुए दीदी, बड़ा निक लगल है कि जब मौसम के हिसाब से कोनो गीत गवनई होके, चाहे खान पान हो, कोनो काम अगर मौसम के हिसाब से होला तो बहुत सही रहेला।
0: माने का गठियौले हो, मौसम के हिसाब से बतियावा तू खाए पिए का बात। एकर मतलब कुछो मौसमी चीज लेके बैठल हो, हमसे छोराओ छिपावत हो।
1: अरे नाही दीदी, काहे की छिपाई लेके आयल हैं। देखो मौसम में जब निकलमी घर से बहरे ना, तो ये मौसम में देखमी कि बड़ा नीक लगवे, ठेला पर ले ले रहुए, लाल लाल लौकत रहुए, तो कहमी कि रुका ले ले चली। मने कहे का मतलब है कि देखा हम लीची लेके आयल हैं।
0: देखा, लीची का नाम सुनते मुंह में पानी आ जाएला। मन करेला कि पानी न पीही, अब भर कटोरा लीची के हु दे दे, छील छील खात रहे।
1: मने ये बतावा अब तो कि क्यों छील छील दे तो तू लीची खाइबू?
0: हाँ, अरे तो तू लोगन छोट बहन हो, कौने खातिर हो।
1: हाँ दीदी, तो बात सही है, जरूर खियाई। रुका तो के अब्बे हम लीची खियावते हैं, लेकिन एकर बहुत फायदा है दीदी। ई नहीं है कि खाली मन करता नीक लगाता तो खा लिया नहीं पेट भर, एकर बहुत फायदा है कि खैला से देखो जो रोग प्रतिरोध क्षमता होला शरीर में ना, ओके बढ़ावा मिलेला।
0: आज जौन मुहवा चमकत है ना, तो हार हमरो चमकेला, तो लीचिए खैले से मन विटामिन सी इतना बढ़िया होला ना कि त्वचा बदे बड़ा फायदेमंद होला। तो मौसम में मने के खाई लेवे के चाही समय समय
1: हाँ,
0: पर।
1: आ देखा लू से भी बचावेला हो, जो शरीर में पानी का कमी होला ओके भी दूर करेला, और पेट संबंधी पेट से कोनो समस्या है तो ओमें भी बहुत राहत देवेला।
0: सही बात है। और प्रकृति हमन के

0: ना ऐसन चीज ऐसन समय में देले है जो वो हिसाब से बनल रहे और शरीर के स्वस्थ रखे ना।
1: सही बात कहत हो दीदी। आ खैला पियला के हमने का बात करत नहीं जा, ये मौसम के बात होता हो तो देखो अपने तो खाए पिए के है ही है, लेकिन घर के जवन छोट छोट बचवा हम सब ना उन्हनों का देखभाल कहिल बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है हो। अब तक घामे में कुल निकल जाता हुआ ना, मान लो नजर बचा के निकल जाता हुआ खेले कूदे ना, आवत हुआ घामे में उन्हन के तना घाम लगे ना बतास लगे, आवत हुआ और ढक ढक करके पानी पी ले हुआ, नहीं में डॉक्टर दौड़े के पड़ जाता भाई। तो घरे के जो घरेती लोग हैं उन्हीं के देखे के हुई, समझे के हुई, चेत के रहे के हुई कि भाई अपन तो ध्यान रखबे करें, बूढ़ पुरनिया का रखें और साथे में बचवन का भी ध्यान रखे के है, हम लोगन के ध्यान रखे के है घड़ी का। देखा बिच्चे में आए के कह था कि अब चले का बेरा हो तो ढेर बतियावा लोगन मत, तो चला बहनी लोगन से विदा लिहल जाए और कहल जाए
1: नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे हमारी ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम अंगनैया। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा लोक संगीत कार्यक्रम। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत, आज की कलाकार आराधना सिंह। कार्यक्रम के आरंभ में आपके स्वर में प्रस्तुत है ये कहरवा।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं आराधना सिंह। अभी आपने सुना आपके स्वर में कहरवा। कहरवा के बाद कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है दादरा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया।

0: ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति की शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक

0: सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमरीका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमरीका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले दो दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है।

दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशा, प्रस्तुति स्नेहा सिंह की।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम कहकशा गैर फिल्मी और गजलों के इस कार्यक्रम में मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा सिंह करती हूं आप सभी का स्वागत और नमस्कार। दोस्ती हमने खूब निभाई है, दोस्ती और प्यार में न कोई दीवार बनाई है। लोग तो दोस्ती करते हैं चेहरे देखकर, पर हमने तो दोस्ती की एक पहचान बनाई है।

कुछ उलझे हुए सवालों से डरता है दिल, न जाने क्यों तन्हाई में बिखरता है दिल। किसी को पा लेना कोई बड़ी बात तो नहीं, पर उनको खोने से डरता है ये दिल।

मेरी सांसें भी अब तो मेरी ही ना रही, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो आ साजन सुन ले धड़कन मेरी। कार्यक्रम कहकशां के इस अंतिम गजल के साथ मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा सिंह छोड़े जा रही हूँ आप सभी को। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम कहकशा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की हमारी ये सभा। शाम 4 बजे दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.5 मीटर था, 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन, मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है, आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्र रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं लेकिन कोई माँ किसी माँ को ऐसा नहीं

0: लगता है कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये बातचीत तो हुई थी। लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी, लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
1: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज़ ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुँच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना।
0: वाह,
1: अच्छा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बरसाया?
0: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफ़ी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफ़ी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक अफसर बन गया।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, क्योंकि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
0: देखो, जाना तो काफ़ी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता। तो काफ़ी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में, हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है। तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
1: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए स्कूल में काफ़ी शैतानियां क्या करते थे?
0: हाँ, यस, मेरा एक बड़ा भाई है, तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं काफ़ी शरारी था, मेरे मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है, तो काफ़ी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए। कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफ़ी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: बरकरार है। अच्छा ये बताइए शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए, क्योंकि
0: हाँ,
1: आर्मी का तो काम नहीं है ये आर्म फोर्सेस का कि आपसे आप में से एक ऑफिसर बनाना है, लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: शैतानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे, तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन। तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है, और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज़ करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोर्समेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
1: वाह क्या बात है। तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए

0: में आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया, एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
1: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की अकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी। और इमेजिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया। और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया और आगे मेरा सफ़र 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बनकर पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहाँ ना होता?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी ज़िंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
0: वाह, क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा ख़राब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
1: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया।
0: मैं आज बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
1: 2-3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
0: अच्छा,
1: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद 1-2 बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ, बट देख के ऐसा लग रहा था कि बस मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
0: ले जा ले, ग्रिल लगा ले।
1: 5 महीने का टर्म होता है, जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
0: वाह, क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
1: हमेशा
0: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है,
1: मदद करती है।
0: आप
1: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज़ वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, और लॉट हैज़ गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
0: जी, कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, यहाँ मैं प्ले करना चाहूंगी।
1: तो माँ के, माँ माँ जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई,
0: जी जी जी,
1: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। एंड हाँ। वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
0: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
1: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं, जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
0: जी,
1: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोर्समेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना, और देश की सारी माओं के लिए गाना।
0: वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात, और उसके जज्बात

देश प्रेम से जुड़े हुए हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ ये कहूँगी मैं सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और उनकी से बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। ख़ासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज़ पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्ज़ाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफ़र है, सफ़र नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। और कहीं ना कहीं आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज़ ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज़ द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो हैं लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में।

0: कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था। और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन। और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीज़ें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे। हमने कुछ दिमाग लगाया और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती। और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे उससे मेरे को जिंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
1: वाह क्या बात है। अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक ज़रूर पहुँचाया जाए, और आगे का कारवां आप ही की ज़ुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई ऐसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी और आप उनके साथ कॉलेज में थे। आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही, कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया, लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास ला के खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास ला के खड़ा कर दिया और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई। हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अवसर रहता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूँ, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजन।

0: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है।
1: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो, क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता। पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय, डर, खौफ काफ़ी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूँ चाहे जो भी हूँ, उस कमांड को सक्सेस करना है मैं, और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूँगा। और ये ऑफकोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
0: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स, आई वुड से।
1: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस है, स्प्रिट कोर है, भारतीय सेना का जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
0: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफ़ी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूँ, कॉरपोरेट में जैसे कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
0: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
1: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीज़ों को खरीदना। जब

0: लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेडियर राणा है, उदाहरण बॉर्स, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए।

आते हैं, लेकिन कर्नल तनवर यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से और उन्हीं के नाम, ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशंस के बारे में बात की, आपके आपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है।

0: एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो। और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला, मेरी वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
1: सो स्वीट।
0: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अफसर था, वो शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
1: अच्छा।
0: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरी मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
1: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी। तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइफ्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
1: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, तमाम ऑफिसर्स की है, जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी कारगर साबित होती है,
0: बिल्कुल
1: नित्य प्रति कार्य करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को, जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है, और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
0: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
1: कोई कैसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
0: बहुत याद आता है, ऑफकोर्स माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज ऑल्सो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
1: क्या बात है।
0: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए हैं, मेरे को अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजर आना आ जाता
1: है। क्या बात है, यानी कि वो पल जिस
0: वो पल जिसमें उन्होंने डांस किया
1: और उनका नृत्य कहीं ना कहीं आपको लुभा गया। वाह क्या बात है। कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं, और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हरपल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ। मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं। मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा अभी हरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं ना कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया। एक ऐसी बात, एक ऐसी

0: सम्मान जिसे आप दोहराती रहेंगी, बताती रहेंगी सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक उस मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है
0: जी।
1: मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूँगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
0: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप
1: आज की युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा
0: जी।
1: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आए और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
0: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी ज़िंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुँचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम ज़रूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तंवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद

मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। आज हम आपको सुना रहे हैं बघेली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती के गीत। आज आपने सुना बघेली लोकगीत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा दिनों की बात कार्यक्रम युवाणी के साथ। आज इस कार्यक्रम के साथ हैं युवा साथी तैयबा मारूफ और भव्या अग्रहरी। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम युवाणी।

0: एनर्जी कह सकते हैं हम, या जेंसी वाली लैंग्वेज में बोलूं तो नेगेटिव वाइब्स टू पॉजिटिव वाइब्स।
1: करेक्ट, बाकी युवावाड़ी वाइब्स लेकर तो हाजिर हैं ही हम, और पूरी जिंदा दिली के साथ आतुर हैं आप सभी अनमोल दोस्तों का स्वागत करने के लिए।
0: तो कीजिए कबूल अपनी युवाणी और आज की इन दो साथियों को पूरे 45 मिनट के लिए,
1: जिसमें मैं हूँ आज आपके साथ आपकी वही पुरानी अतरंगी दोस्त तैयबा मारूफ, और मेरे साथ है मेरी वो सुंदर सुशील सी दोस्त जिसका नाम और काम दोनों एकदम भव्य है,
0: यानी भव्या। तो आप सभी को हमारा स्नेह भरा नमस्कार।
1: तो मेरे माइंड ब्लोइंग दोस्तों, हमेशा की तरह ना आज भी हम लेकर आ गए हैं शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का पिटारा। तो इसी के साथ अब अपने कार्यक्रम का हम श्री गणेश करते हैं, शिव ओम करते हैं, आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं इस अंदाज में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: दोस्तों अक्सर कहा जाता है ना कि किसी भी देश की पहचान उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी परंपराओं से होती है। और ये तो आपने भी सुना होगा कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी जो पेट पूजा सामग्री यानी हमारा भोजन भी हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण, एक अहम हिस्सा हो सकता है जो हमें प्रकृति, समाज और संस्कृति से जोड़ने का काम करता है।
6: बिल्कुल तैयबा, तभी तो हर साल 18 जून को सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें सिर्फ अच्छी अच्छी डिशेस का लुत्फ उठाने के लिए नहीं, बल्कि इसके प्रति जिम्मेदार और जागरूक बनने के लिए भी प्रेरित करता है।
5: क्योंकि दोस्तों सतत गैस्ट्रोनॉमी का मतलब ही होता है एक ऐसा खान पान, ऐसी खाद्य व्यवस्था जो वातावरण के अनुकूल हो, हमारे किसान भाइयों को जो प्रोत्साहित करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखे, संजोए रखे और संभाले रखे। आज के समय में जब खाद्य संकट और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, तब यह विषय और भी अधिक समसामयिक हो जाता है, जरूरी हो जाता है।
6: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार तो दुनिया में हर साल लाखों टन खाना बर्बाद हो जाता है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग आज भी पर्याप्त भोजन से वंचित हैं। ऐसे में भोजन का सम्मान करना, जरूरत के अनुसार भोजन लेना और स्थानीय तथा मौसमी खाद्य पदार्थों को अपनाना हम सभी की जिम्मेदारी है और समय की मांग भी है।
5: सही कहा भव्या, हमारे देश की पारंपरिक भोजन संस्कृति भी हमें यही सीख देती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना ही सतत विकास का आधार है। हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से स्थानीय अनाज, मौसमी फल और पारंपरिक व्यंजनों पर जोर देते आए हैं जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक होते हैं।
6: दोस्तों आज का दिन केवल पर्यावरण और भोजन के प्रति जागरूकता का ही नहीं बल्कि वीरता और बलिदान को नमन करने का भी दिन है। आज हम झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के शहादत दिवस को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं।
5: दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी वीर नायिका थी जिनका नाम सुनते ही हमें साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति की तस्वीरें आंखों के सामने उभर आती है।
6: 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस के साथ संघर्ष किया। उन्होंने ये सिद्ध

0: कर दिया कि देश और स्वाभिमान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प सबसे बड़ी शक्ति होती है। युद्ध भूमि में उनका पराक्रम इतना अद्भुत, इतना अनोखा था कि उनके विरोधी भी उनकी वीरता की प्रशंसा करने को विवश हो गए थे।
1: और दोस्तों, इसे ही तो कहते हैं लोहा मनवाना। जब युद्ध क्षेत्र में अंचलों ने के पुरुषों ने भी अपनी पगड़ी ना अंग्रेजी हुक्मरानों के पैरों में रख दी थी, तब महज एक वो महिला ने अपनी नारी शक्ति का एक बेमिसाल, बेजोड़, अतुलनीय और लाजवाब उदाहरण पेश किया था। अपने प्राणों की आहुति दे दी, मगर अंग्रेजों के हाथ अपना शव भी लगने न दिया।
0: अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको शिक्षा देने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
1: यानी मेरे साथियों, उनका जीवन आज भी हम सबको यही सीख, यही संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे मन में साहस और लक्ष्य के प्रति समर्पण है तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, साथ ही आज हम सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी को शहादत दिवस को भी श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। उनका जीवन सेवा, त्याग, सहनशीलता और मानवता का अनुपम उदाहरण है।
1: दोस्तों, गुरु अर्जन देव जी ने समाज में प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया। उन्होंने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कर आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना को एक नई दिशा दी।
0: इतिहास में उनका बलिदान सत्य और

0: दोस्तों, हर व्यक्ति की ना कुछ ऐसी पसंद होती है जो समय के साथ और भी खास बन जाती है। कभी कोई किताब, कभी कोई गीत और कभी कोई फिल्म हमारे दिल के बहुत करीब आ जाती है।
1: बिल्कुल, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें जिंदगी से जुड़ी कई अहम बातें भी सिखाती हैं। आज मैं बात करना चाहूंगी अपनी एक ऐसी ही पसंदीदा फिल्म की।
0: तो फिर बताओ भव्या, कौन सी है तुम्हारी वो पसंदीदा फिल्म?
1: मेरी पसंद है तारे जमी पर। ये फिल्म एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे पढ़ाई में कमजोर समझा जाता है, लेकिन उसके अंदर छिपी प्रतिभा और सोच को कोई समझ नहीं पाता।
0: बिल्कुल भव्या, ये फिल्म भी हमें यही संदेश देती है कि हर बच्चा अलग होता है, हर किसी की अपनी खासियत होती है, जरूरत होती है तो बस उसे समझने की, तराशने की और उसका साथ देने की।
1: आमिर खान द्वारा निर्देशित ये फिल्म शिक्षा, बच्चों की भावनाओं और उनकी सोच को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। फिल्म का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसके रिलीज होने के समय था।
0: और यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि माता-पिता और शिक्षकों को भी बहुत कुछ सोचने और सीखने का मौका देती है।
1: मेरे लिए ये फिल्म इसलिए खास है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ अंकों से नहीं मापी जाती। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है।
0: वाकई भव्या, और इस फिल्म के गाने भी ना लोगों के दिलों को आज भी छू जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो आइए मेरी पसंद की इसी फिल्म तारे जमी पर का एक बेहद खूबसूरत गाना सुनते हैं।

0: दोस्तों, अब समय हो गया है यूथ डायरी का, जहां हम हर दिन सीखते हैं कुछ नए शब्द, उनके अर्थ और उनका सही प्रयोग। क्योंकि भाषा हमारी जितनी समृद्ध होती है, हमारी अभिव्यक्ति भी उतनी ही प्रभावशाली बनती है।
1: बिल्कुल तैयबा, नए शब्द सीखने से न केवल हमारा ज्ञान बढ़ता है, बल्कि हम अपने विचारों को और बेहतर तरीके से व्यक्त भी कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं आज के हिंदी और अंग्रेजी शब्द के बारे में।
0: तो मेरे साथियों, आज का हमारा हिंदी शब्द है अभिप्राय।

0: तो आइए जानते हैं आज के हिंदी और अंग्रेजी शब्द के बारे में।
1: तो मेरे साथियों, आज का हमारा हिंदी शब्द है अभिप्राय।
0: अभिप्राय का अर्थ होता है किसी बात, विचार या कथन के पीछे छिपा वास्तविक आशय या उद्देश्य। कई बार किसी व्यक्ति की बात को सही तरह से समझने के लिए उसके अभिप्राय को समझना बहुत जरूरी होता है।
1: जैसे अगर कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहे कि समय का सदुपयोग करना सीखिए, तो उनका अभिप्राय केवल पढ़ाई करना नहीं बल्कि समय की महत्ता को भी समझना होता है।
0: एक वाक्य में इसका प्रयोग कुछ इस प्रकार किया जा सकता है, आपके कथन का अभिप्राय मैं भली भांति समझ गया हूँ।
1: यानी भव्या, किसी भी बात का केवल शाब्दिक अर्थ ही नहीं होता बल्कि उसके पीछे की भावना और उद्देश्य को समझना भी जरूरी होता है।
0: अब बात करते हैं आज के अंग्रेजी शब्द रिक्लूसिव की।
1: दोस्तों, रिक्लूसिव का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एकांत में रहना पसंद करता हो और सामाजिक गतिविधियों में कम भाग लेता हो, जिसे आमतौर पर हम इंट्रोवर्ट कहते हैं।
0: कुछ लोग भीड़ भाड़ से दूर रहकर पढ़ने, लिखने या अपने काम पर ध्यान देना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए रिक्लूसिव शब्द का प्रयोग किया जाता है।
1: उदाहरण के लिए, ही वॉज अ रिक्लूसिव राइटर हु प्रेफर्ड अ क्वाइट लाइफ। मतलब वो एक ऐसे लेखक थे जो शांत और एकांत जीवन पसंद करते थे।
0: तो दोस्तों, आज के शब्द रहे अभिप्राय, यानी किसी बात के पीछे छिपा वास्तविक उद्देश्य, और रिक्लूसिव यानी एकांत प्रिय व्यक्ति। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इन दोनों शब्दों को अपनी बातचीत और लेखन में जरूर शामिल करेंगे।
1: और मेरे साथियों, अब शब्दों की इस रोचक दुनिया से आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलते हैं पीछे ताकि अतीत के पन्नों को पलटा जा सके और इतिहास में अमर घटनाओं से रूबरू हुआ जा सके।
0: क्योंकि दोस्तों, हमारा इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं होता है, बल्कि ये उन घटनाओं, उपलब्धियों और व्यक्तित्वों का दर्पण होता है जिन्होंने समाज और देश की दिशा और दशा बदली।
1: बिल्कुल भव्या, इतिहास के पन्नों में ऐसी अनेक घटनाएं दर्ज होती हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं और ये सिखाती हैं कि समय के साथ दुनिया किस तरह बदलती रही है।
0: कभी किसी महान व्यक्तित्व का जन्म, कभी कोई महत्वपूर्ण खोज और कभी कोई ऐतिहासिक निर्णय आने वाली पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव छोड़ जाता है।
1: तो साथियों, आइए जानते हैं आज के दिन के इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
0: 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आज ही के दिन गोवा में पुर्तगाली शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। उनके नेतृत्व में चला यह आंदोलन गोवा की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसी कारण 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में भी याद किया जाता है।
1: बात करें वर्ष 1956 की, तो 1956 में आज ही के दिन महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था। इस कानून ने महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में अधिक अधिकार प्रदान किए और सामाजिक समानता को मजबूत करने में भी एक अहम भूमिका निभाई।
0: और 2006 में कजाकिस्तान ने अपना पहला संचार उपग्रह कसैट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इस उपलब्धि ने अंतरिक्ष और दूर संचार के क्षेत्र में कजाकिस्तान की तकनीकी क्षमता को नई पहचान दिलाई।
1: वाकई, इतिहास की ये घटनाएं हमें अतीत से जोड़ने के साथ साथ वर्तमान को बेहतर ढंग से समझने का अवसर भी देती हैं। तो मेरे साथियों, इन्हीं जानकारियों के साथ अब वक्त है थोड़ा विश्राम लिया जाए।

0: दोस्तों, आप युवाओं के लिए नए अवसरों और नई संभावनाओं की जानकारी लेकर एक बार फिर हम उपस्थित हैं। अगर आप अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं तो ये जानकारी ना आपके लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं अपने परिश्रमी युवा साथियों की अगली काम की खबर यानी रोजगार सूचना की।
1: तो आज की रोजगार सूचना इस प्रकार है कि 18 से 32 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार हेतु कर्मचारी चयन आयोग SSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी SSC CGL 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है।
0: आपको बता दें कि ये भर्ती 12,256 पदों के लिए की जानी है और इसकी आवेदन प्रक्रिया भी चल रही है साथियों। लेकिन आप में से जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो 22 जून 2026 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
1: बाकी इससे जुड़ी और जानकारियों के लिए आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों, अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, बस जरूरत है सही जानकारी, सही तैयारी और सही समय पर कदम उठाने की।
1: बाकी हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ हैं। बस अपने गोल पर विश्वास रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
0: और हम भी अपने कार्यक्रम में एक एक करके आगे बढ़ ही रहे हैं भव्या, और इसी कड़ी में अब हम आपको बताते हैं अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। दोस्तों, सीखो और कमाओ योजना राज्य सरकारों द्वारा बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए चलाई जा रही एक बेहद कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत युवाओं को कई सारे उद्योगों में काम सीखने या यूं कहूं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का अवसर और हर महीने एक निश्चित स्टाइपेंड यानी कि भत्ता दिया जाता है।
1: इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक कार्य कुशलता प्रैक्टिकल स्किल्स प्रदान करना है, ताकि वे आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकें।
0: और बात करें अगर इसकी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी आयु 18 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आपकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ITI ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए।
1: योजना के तहत 46 क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, ITI, मैनेजमेंट, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी आदि में 700 से अधिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष पूरी होने के बाद युवाओं को राज्य कौशल विकास या संबंधित बोर्ड द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है।
0: तो दोस्तों, अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा सीखो और कमाओ युवा साथी पोर्टल के माध्यम से भी इससे जुड़ी योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आप पूरी कर सकते हैं। और इसी प्रक्रिया में अब वक्त हो चला है कि हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर्स पर भी नज़र डाल ली जाए, लेकिन उससे पहले भव्या, पहले हम अपना कल का सवाल दोहराते चलें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कल का हमारा सवाल था, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, जिसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश।
0: और हमारे जिन साथियों ने इसका ससमय उत्तर किया है उनके नाम है आंध्र प्रदेश ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, और प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, इन्होंने हमें सही जवाब भेजा है। और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज

0: वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। नेपा नगर मध्य प्रदेश से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा, बसंती बाई और गणेश शिवदे और श्यामा बाई रायकवार।
1: तो दोस्तों, सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
0: इसी के साथ मेरे साथियों, अब बारी है कि अपना आज का प्रश्न भी जान लिया जाए।
1: तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। एक बार प्रश्न को दोबारा से सुनिए। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था।
0: और अपने उत्तर हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल यूथ EIR वाराणसी पर भेजिए या फिर मेल कीजिए youth@gmail.com पर। और जब तक आप अपना आंसर हमें भेज रहे हैं, लुत्फ उठाइए इस प्यारे से गीत का।

0: दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल उसके वर्तमान से नहीं बल्कि उन महान व्यक्तित्वों से भी जुड़ी होती है जिन्होंने अपने विचारों, संघर्षों और कार्यों से समाज को नई दिशा दी। और आज हम एक ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी की बात कर रहे हैं। उनकी जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं, जिनका नाम है सी विजय राघवाचार्य।
1: बिल्कुल तैयबा, उन्होंने देश की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरूकता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे और उन्होंने अपने विचारों तथा कार्यों के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने का प्रयास किया।
0: उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए किए गए योगदान में निहित होती है।
1: आज जब हम तेजी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, तब ऐसे महान व्यक्तित्वों को जीवन से प्रेरणा लेना और भी आवश्यक हो जाता है। उनके आदर्श हमें बताते हैं कि ईमानदारी, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य निष्ठा के साथ किया गया कार्य न केवल व्यक्ति को सम्मान दिलाता है बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है।
0: युवाओं के लिए उनका विशेष रूप से प्रेरणादायक योगदान रहा है। यह हमें सिखाता है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो मन में राष्ट्र तथा समाज के प्रति समर्पण की भावना हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।
1: इन्हीं सुंदर विचारों और शुभकामनाओं के साथ अब सचमुच समय हो गया है आपसे विदा लेने का।
0: तो चलते चलते आपकी दोस्त सैयबा आपसे यही गुजारिश करेगी कि साथियों, ख्याल रखिएगा अपना।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, हम
1: समाचार।
0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार, समाचारों के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव जिला में 570 करोड़ रुपया से बेसी लागत का 101 विकास परियोजना का लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भेने। इस मौका पर वहां के अपने संबोधन में कहने की उन्नाव राज्य राजधानी क्षेत्र का हिस्सा बनावल गयल बा। मुख्यमंत्री उन्नाव से होत कानपुर तक लेकर रैपिड रेल के नया प्रस्तावों के बारे में जिक्र कैले।
2: लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर। क्या लखनऊ, क्या उन्नाव, क्या हरदोई, क्या सीतापुर, क्या बाराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे और विकास में सबकी सहभागिता होगी, बराबर की सहभागिता। एक बड़ा क्लस्टर बनेगा।
1: मुख्यमंत्री अजय कानपुर जिला में प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 में किसानन के साथ बातचीत कैले। ए मौका पर वहां के उत्कृष्ट अन्नदाता किसानन के सम्मानित कैले। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री किसानन के हित में सरकार के कोशिशन के बारे में चर्चा कैले।
2: पहली बार आपने देखा होगा सॉयल हेल्थ कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती माता के स्वास्थ्य का परीक्षण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रोक्योरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई।
1: वाराणसी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से बिहने संध्या 4:30 बजे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत राष्ट्रीय कार्यशाला आ लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रस्तावित एगो राष्ट्रीय समारोह से वर्चुअल माध्यम के जरिए एक कार्यक्रम में शामिल लाभार्थियन आ नियोक्ता लोगिन के संबोधित करी है। वाराणसी क्षेत्र के 10 जिलों से नियोक्ता, कर्मचारी, उद्योग प्रतिनिधि आ जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहले हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल विकास आ विरासत के संगम को स्वर्णिम कालखंड रहल हो। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह कहले कि ए दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आ उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण भइल, वहीं दूसर की ओर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर आ मेक इन इंडिया जैसन पहल देश के विकास यात्रा के अभूतपूर्व गति दिहले हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी अगुवाई में पछिला 12 साल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आ सबका प्रयास के सिद्धांतन पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति भइल बा। नक्सलवाद के उन्मूलन आ नक्सल प्रभावित इलाकन में विकास बदे सरकार के खास कोशिशन के लेके प्रस्तुत बाय एगो रिपोर्ट।
3: पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना

0: योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जेवर के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से अब कार्गो विमान सेवा शुरू हो चुकल बा। नगर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू आज बतौलने कि चेन्नई से चमड़ा का सामान आ ऑटो पार्ट्स के सतही कई गो सामान लेके पहला कार्गो विमान ए हवाई अड्डा पर उतर चुकल बा। दो दिन पहले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर वाणिज्यिक परिचालन शुरू भइल रहे। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.56 मीटर था। 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की जानकारी देने का। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हमको सुनवाएंगे गायन, कलाकार होंगे उस्ताद विलायत हुसैन खान। समय होगा रात्रि 10:30। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे आज रात 8:10।

सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। रात भी आठ बजे हमारे आज के कलाकार होंगे मिताली सिंह, और खुशियत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनेगा ब्याते समय पशुओं की देखभाल विषय पर डॉक्टर मनोज कुमार और सतीश कुमार की बातचीत। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब नजर डाल लेते हैं कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम।

खेती की बातें प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे ये कार्यक्रम। इसके अंतर्गत करेला की खेती के विषय में जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे प्रातः 6:10 पर। गांधी चर्चा का समय होगा प्रातः 6:25 पर। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ आप सुनेंगे प्रातः 6:40 पर।

ये थी जानकारी आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुना। आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म थी आकाशदीप।
1: गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मैंने प्यार किया का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, असद भोपाली के बोल थे और संगीत राम लक्ष्मण का। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: रात्रौ संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे ग्रुप ए क्रीडायां चोकोस्लोवाकिया देशः दक्षिण अफ्रीका देशेन सह स्पर्धिष्यते। क्रीडा रात्रौ सार्धनववादने आरभ्यते। पश्चात् स्विट्जरलैंड देशः संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस क्रीडांगणे रात्रौ सार्धद्वादशवादने ग्रुप बी क्रीडायां बोस्निया हर्जेगोविना दले सम्मुखी भवतः। फीफा विश्व चषक स्पर्धायां कोलंबिया देशस्य विजयः। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम
1: राम।
0: राम। और गौरी बहन, क्या हाल चाल बाय?
1: हाल चाल तो ठीक है बाबू जावन भैया। इस समय यह धान का बिया डाला था खेते में।
0: अच्छा, धान के बिया इस समय डलात बा, नर्सरी तैयारी होत बा। एक ये कि बहुत सारा जो किसान भाई बाड़ा हैं वो तैयारी कर करके डाल भी देल बाड़ा, कुछ लोग डालत भी बाड़ा।
1: डाला तो हुआ, मतलब हैया हुआ नर्सरी, और समय से नर्सरी डाल देना तो फसल भी समय से तैयार हो।
0: अच्छा
1: इनमें
0: कि
1: जितना देर करा उतना फिर फसल दे से तैयार।
0: हाँ, ये तो गौरी बहन बहुत बढ़िया बात बतौलू है। यही से कहल जाला कि अग्र सोची सदा सुखी, मतलब खेती किसानी का जौन काम होला वो पहले पहले अगर कह लेबू तो ओकर जौन पैदा होले ओकरे पर भी बहुत असर जाले।
1: बिल्कुल सही कथन। असर तो जैबा करला, लेकिन ये समय एक यो नुकसान होता नर्सरी लगेले पे कि अगर उके घेराई न करा तो सुन आवारा जानवर हैं, नील गाय हैं, चर जात हैं, तो
0: अच्छा
1: उके
0: अच्छा
1: घेरा कर जाली लगा के या कोनो कपड़ा से को घेरा कर बहुत जरूरी है।
0: अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात बतौलू। अच्छा एक चीज़ है कि जैसे अब नर्सरी बिया हमारे किसान भाई डाल देना और डलने के बाद ओके छोड़ देना, तो जो छोटा पशु बना चाहे नील गाय के जोन बात कैलू है तो नील गाय जा करके तो भैया को बेकार कह दी है,
1: बेकार कर दे।
0: तो एकरे बदे ओके मतलब घेर देवे के चाहिए, सुरक्षा कह लेवे के चाहिए ताकि अपन सुरक्षित रहे। और एक चीज़ और है गौरी बहन,
1: का बुझाऊं।
0: नर्सरी है हुआ, गर्मी का दिन भी है आज, जौन हमारे किसान भाई बाड़न ओके समय से सिंचाई भी करत बाड़न और सिंचाई का कोशिश ही करे के चाहिए कि हमेशा शाम के टाइम करे के चाहिए।
1: ये बात तो सही कहते हैं, शाम के समय करे के चाहिए सिंचाई, सुबेरे या शाम के करे के चाहिए, क्या कि उतना धूप होता गर्मी में करे तो और वो फसल के नर्सरी के नुकसान ना करे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गौरी बहन एक चीज़ और जानत हो, देखा हमारे किसान भाई हूँ तरह तरह का फसल पैदा करना है ना, जिसे धान भैल, गेहूँ भैल, मक्का भैल, बाजरा भैल, चाहे सब्जी में भैल आलू भैल, प्याज भैल, मटर भैल या फिर टमाटर भैल, तरह तरह के सब्जी बाड़ी, दलहन का फसल भी बाड़ी और तिलहन भी बाए, सरसों बाए जैसे। तो कहे के मतलब ये है कि अब हर किसान भाई जौन बाड़े कुल फसल तो पैदा नहीं करना।
1: हाँ, अब खेत भी सीमित है तो एक ही
0: हाँ
1: खेत में हर चीज़ का तो सब्जी या हर दलहन या तिलहन या चावल गेहूं हर चीज़ तो उगा नहीं सके।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं उगा सकल। तो कहे के मतलब ये है कि अगर जवन वो फसल ना पैदा करत बाड़ा ना उगावत बाड़ा, अब वो फसल भाई खाए के तो कुल चाहिए भाई, तेलो चाहिए, सब्जियों चाहिए और गेहूँ चाहिए, धनों चाहिए, तो ओकरे बदे जौन हम पैदा ना कर दवाने किसान भाई ओकरे बदे तो भाई अब बाजारी में जाके खरीदे कि ना होई।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा एक चीज़ है, अगर कुल फसल पैदा कर हमके जौन जरूरत बा अगर हम पैदा करें तो हम अपने आप में एक तरह से जौन भाई किसान भाई बाड़े चाहे हम बाड़ी चाहे तू बाड़ू हम निर्भर हो गए अपने में। तो यही निर्भर योजना के तहत हमारे भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान चलवे ले रहा है।
1: ये तो बिल्कुल सही कथन। आत्मनिर्भर भारत अभियान सरकार 2020 में चले ले रहा है, यह जब कोरोना का समय आ रहा है
0: हाँ ये
1: जब।
0: बात तो सही कह लो, जो कोरोना के समय के बात करत बड़ू
1: हाँ उस समय योजना आ

0: रहल ताकि हम सब अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो और हर चीज़ का उत्पादन या हर चीज़ का जौन भी हमने सबके ज़रूरत हो वो खुद ही अपन पैदा करे, खुद ही होकर मतलब आसपास से होकर खरीदा, खुद
1: माने
0: पैदा
1: कोई
0: कर
1: पर, कोई पर निर्भर रहे की
0: रहक
1: जरूरत ना
0: जरूरत
1: ही
0: ना।
1: बा। अच्छा जब बात कैलू हो कोरोना महामारी के ना, तो उमन आर्थिक प्रभाव से निपटे बदे, देश के हर क्षेत्र के विकास करे बदे, निर्भर होए बदे, हमार भारत सरकार लगभग 20 लाख करोड़ पैकेज का घोषणा भी कैलस, ताकि इमन जे भी हमार गरीब बा चाहे बेरोजगार बा ओकर वो लाभ उठा सके। आ साथे साथे एक चीज़ और, आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक चीज़ और है कि अपने अंदर जौन हुनर बा, मतलब जौन कौशल बा, ओके विकसित करके और अपने से छोटे स्तर का कोनो उद्योग भी लगा सका। साथे साथे जब उद्योग कोनो लगाए ले बा तो ओकर फायदा अपने परिवार के मिली, आ अपने परिवार के साथे साथे अपने देश का भी फायदा हुई।
0: ये तो बिल्कुल सही कथन बुझावन भैया। और एक और चीज़ इसमें हा इनमें हा कि जैसे बहुत सारा चीज़ जो ना अपने देश में हर चीज़ नहीं होता, बाहर से ख़रीदा के होता,
1: बिल्कुल
0: तो अगर बाहर से उस चीज़ के ख़रीदा के होता तो अपने देश में वो महंगा भी मिला था। तो
1: बिल्कुल
0: एक
1: सही कहलू
0: ज़्यादा
1: आप।
0: ज़्यादा ये करे के चाहिए कि अगर वो चीज़ हम अपने देश में ही बनाए, ओकर उत्पादन अपने देश में करिए, ओकर पैदावार अपने देश में करिए, तो वो चीज़ हम सबके बहुत सस्ता दाम पे और आसानी से उपलब्ध भी हो जाए और दूसरे देश पे निर्भरता भी कम हो जाए।
1: बिल्कुल अच्छा जान तो कितना बढ़िया बात बतौलू। यही से कहल जाला ना कि अपनी थाली में खाना और आपन गीत गाना, हमारे दादा उदा लोग ने कहावत कहा है, माने अपने दम पर जीवन जिए के चाहिए, अपन पहचान स्वयं बनाओ के चाहिए, अपने पैर पर खड़ा होए के चाहिए। वही के तहत ई आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना चलावल गई बा।
0: ये तो योजना बहुत बढ़िया है सरकार का। और इनमें ये भी है कि जैसे एक योजना यही के तहत रहा स्टार्टअप इंडिया वाला, कि
1: हाँ
0: जौन युवा देश का हैं
1: हाँ
0: उनके अंदर जौन भी हुनर है,
1: माने जो बेरोजगार बाण,
0: हाँ
1: हाँ
0: बेरोजगार हैं उनके अंदर कोनो हुनर कौशल है,
1: हाँ
0: तो ओकरे वो सीख के कोनो चीज़ कोनो हुनर सीख के कोनो कौशल सीख के अपन रोजगार भी कर सकलन और अपन आजीविका चला सकलन।
1: बिल्कुल सही कहलू हा। यही से कहल जाला कि अच्छा समय कभू ना आवत, जानत हो अच्छा समय कभू ना आवत, समय के अच्छा बनावे के होला।
0: बना
1: तो वही के तहत ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जोन रहा है हमारे देश में, वही का एक उदाहरण हो। अच्छा जानत हो इसे लाभो बहुत बा है, आत्मनिर्भर भारत योजना से बहुत लाभ है। अब जैसे देश में कोनो उद्योग करे के बाद उद्योग का विकास बड़ा तेजी से होला। अच्छा एकरी व्यवस्था से रोजगार तरह तरह का मिलेला, आ जीवन के स्तर में सुधार होला और हर व्यक्ति सक्षम हो जाए। भाई जेकरे कोनो हुनर हो गई, कोनो सहूर सीख लेलस, तो अपन धंधा पानी कोनो व्यवसाय कर सकी, तो 4 पैसा कमाई, अपने परिवार का पालन पोषण करी और साथ ही साथ देश के विकास में भी अपन
0: भी
1: योगदान
0: मदद
1: करी,
0: करी।
1: हाँ कि ना।
0: बिल्कुल सही कथन।
1: आ एकरे साथ ही साथ जानत हो कि ये योजना में युवाओं बदे कौशल विकास पर सरकार काफ़ी जोर दिलस, जिसे उनके नए तरह तरह का रोजगार मिलत भी हो।
0: ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा बात कहलन बुझावन भैया। और इनमें और एक और चीज़ है कि जैसे बहुत सारे ऐसे अनाज रहल, दाल
1: हाँ
0: वगैरह रहल, तो ये सब बाहर देश से ही मंगाओ कतल, अब धीरे धीरे अपने देश में ओकर उत्पादन हो लगल, तब उस अब चीज़ पे बाहर जो दूसरे देश पे निर्भरता रहल वो धीरे धीरे अब कम होता।
1: बिल्कुल सही कहलू है। यही से कहल जाला कि भैया आपन सबका एक ही सपना, आपन सबका एक ही सपना, आत्मनिर्भर हो भारत अपना। अच्छा तो गौरी बहन बात बात कही तो होते रहिए मन का, लेकिन लेकिन ऐसा है कि आज आज के बतकही में जौन है ब्याते समय पशुओं की देखभाल का जानकारी डॉक्टर मनोज कुमार और सतीश कुमार के वार्ता हुई। एकरे पहले एक संदेशा सुन लें।
0: सुनो,
2: बदलो बदलो आदत बदलो,
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आज हमने उनके बीच में आयल हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी, जे की पशु चिकित्सक हुआ। आज इनसे हमने लोग जानल जाए कि ब्याते समय पशुअन का देखभाल कैसे लोग करें। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमने ये कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
4: धन्यवाद सर।
3: हमारी किसान भैरों के सबसे पहले आप ये बताएं कि जो मादा पशु होंगे उनका ब्याय का प्रक्रिया क्या है।
4: देखिए, जो हर प्रजाति में पशुओं के, मादा पशुओं में जो ब्याने की प्रक्रिया होती है, उसमें जो मादा पशु होते हैं उनका जो गर्भकाल होता है उसके पूर्ण होने के बाद मादा पशु एक स्वस्थ नवजात को जन्म देते हैं। उसमें नवजात पूर्ण विकसित होना चाहिए और ताकि आगे चल करके वो उस प्रजाति का जो है वंश आगे बढ़ाए। ये प्रक्रिया होती है पार्चुरेशन प्रोसेस, जिसको बोलते हैं ब्याने की क्रिया। इसमें ब्याने के समय पशु में कुछ लक्षण रहते हैं जिसे किसान भाई उसको देख करके समझ सकते हैं कि हमारा पशु अब बच्चा देने वाला है।
3: अच्छा।
4: कभी कभी जानकारी नहीं होती है तो उनमें काफी घबराहट होती है और कुछ समस्याएं भी आती हैं, तो उसको अगर समझ नहीं रहती है तो लोग परेशान हो जाते हैं।
3: अच्छा, तो अगर उनका मान ली मादा पशु हो, वो गाभिन है, अब ब्याह का समय हो गई
4: जी,
3: तो जिसे आप कहते हैं कि उनमें थोड़ा देखभाल खुद से भी करे के है, ऊपर कुछ लक्षण भी दिखी, तो का उनमें लक्षण दिखेला एक बारे में बताएं।
4: लक्षण में सबसे पहले कि जब पशु बच्चा देने वाला होता है तो हफ्ता 10 दिन पहले उसका थन में डेवलपमेंट हो जाता है, थन बड़ा हो जाता है, उसमें दूध बनना शुरू हो जाता है।
3: अच्छा।
4: ताकि आगे जानवर दूध देगा तभी तो उसका नवजात बछड़ा उसको पिएगा, तो उसके लिए थन का डेवलपमेंट

0: के लिए जो वहाँ का एरिया जो है बल्बा जो है ढीला हो जाता है, सो मसल्स लूज होने लगती हैं,
1: अच्छा
0: ताकि बच्चे देने में आसानी रहे, क्योंकि बर्थ कैनाल के द्वारा ही बच्चा निकलता है बच्चेदानी से। ये सब लक्षण है। इसके अलावा पशु जब एक दो दिन रह जाता है तो पशु खाना पीना कम कर देता है, जुगाली भी कम करता है, बार बार पेशाब करता है, और आखिरी समय में जब बच्चेदानी का मुंह खुलने को होता है तो उसमें से एक सर्वाइकल सील होता है,
1: अच्छा
0: बच्चेदानी के मुंह में एक सील रहती है, म्यूकस प्लग रहता है, तो वो लूज होकर के एक रस्सी की भांति जो है निकलने लगता है और उसके पूंछ में लिपटा रहता है। तो ये जब सर्वाइकल सील जब गलने लग जाए, ढीला होने लगे, तो ये समझ जाना चाहिए कि अब हमारा जानवर बच्चा देने लगेगा।
1: अच्छा तो जैसे पशु में जब ये लक्षण आप बताओ थे कि दिखे लगे, तो लोग कैसे तैयारी करें या उकर कैसे और देखभाल करें, एक बारे में तो नहीं बताएं।
0: गाभिन पशु को जो बच्चा देने वाला है उसको हमेशा एक हवादार साफ कमरे में कर देना चाहिए, और कुछ बिछावन हो चाहे भूसी हो कुछ उसके नीचे पशु को डाल देना चाहिए, ताकि पशु उस पर आराम करे। क्योंकि उस समय क्या होता है कि पशु काफी उठता बैठता है, क्योंकि पेट में जब कंट्रैक्शन होता है, बच्चेदानी में जब ऐंठन होता है, तो पशु को थोड़ा सा दर्द भी महसूस होता है, तो पशु बेचैन हो जाता है,
1: अच्छा
0: इसलिए उठता बैठता रहता है। तो उसके लिए एक हवादार कमरा होना चाहिए, वेंटिलेटेड, और थोड़ा सा आरामदायक कमरा होना चाहिए, और गर्मी के मौसम में थोड़ा सा उसमें अगर पंखे लग जाएं, कूलर लग जाएं, तो और पशु को आराम रहता है, या ठंड का अगर मौसम है तो उसमें थोड़ा सा गर्मी का प्रबंध हो, तो ये सब आरामदायक होना चाहिए उसका आवास।
1: अच्छा तो जैसे आप ठंडी के मौसम में कहते हैं कि गर्म का प्रबंध हो, तो क्या बहुत लोगों में अजवाइन या कुछ और भी जो घरेलू चीज होला?
0: नहीं, इसकी जरूरत नहीं रहती
1: अच्छा
0: है।
1: ये कुलों में ना
0: अजवाइन का
1: सुन रहे
0: धुआं
1: हैं।
0: हुआ तो वो भ्रांतियां हैं, जो उससे क्या होता है कि धुआं हुआ रहेगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी, पशु को ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर
1: अच्छा
0: मिलेगा, तो ये सब नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा मैंने
0: अब
1: कितनी धुआं वाला से बचे।
0: कोई जरूरी नहीं है वो।
1: अच्छा, एक और बात हमारे किसान भैया उनके बताई कि जैसे आप कहत रहनी है कि ब्याह से पहले हाई हाई व्यवस्था कर लेवे के हम किसान भैया उनके, तो बहुत ई देखे के में आवेला कि जब पशु ब्याहत हैं तो उनमें कुछ देरी होके लागेला या कोनो ऐसा चीज होला जिसे ओकर नवजात शिशु में के बाहर आवे में देर होके लागेला, किसान भैया लोग घबरा भी जाना,
0: जी
1: तो उनमें उन लोग के का संयम रखे के चाहिए या कितना देर तक संयम रखे के चाहिए, फिर डॉक्टर के कैसे बुलावे के चाहिए, एकरी बारे में बताएं कि वो लोग का उस समय ध्यान दे।
0: देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को बच्चा देने की जो प्रक्रिया है उसको समझना जरूरी है। बच्चा देने की प्रक्रिया 3 चरण में होती है,
1: अच्छा
0: तो उसमें जैसे समय लगता है बच्चा देने का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें पहला है कि बच्चेदानी का मुंह खुलता है, जब गर्भकाल पूरा हो जाता है तो बच्चेदानी में जब संकुचन या कंट्रैक्शन शुरू होने लगता है ऐंठन, तो उसके कारण बच्चे को पुश करता है पीछे की तरफ जानवर, तो उसमें बच्चेदानी के मुंह पे दबाव पड़ता है, तो धीरे धीरे मुंह खुलता है, क्योंकि वाटर बैग भी होता है अंदर बच्चेदानी में। इसके अलावा जब पूरी तरह से मुंह जब खुल जाता है, तो दूसरी प्रक्रिया होती है कि बच्चा बाहर निकलता है, बर्थ कैनाल से बाहर निकलता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चेदानी में मजबूत मतलब ज्यादा पावरफुल कंट्रैक्शन होता है, ऐंठन होता है, और पेट का भी कंट्रैक्शन होता है, फिर बच्चा जो है बर्थ कैनाल से पूरी तरह बाहर निकल जाता है।
1: अच्छा
0: बच्चा जब बाहर निकल जाता है तो ये ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को कि उसके बच्चे के जो नवजात बछड़ा है उसके मुंह में जो है थोड़ा उंगली डाल करके साफ कर देना चाहिए, म्यूकस वगैरह रहता है, और नाक भी साफ कर देना चाहिए, ताकि उसका सांस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाए,
1: अच्छा
0: ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और पशु को चाटने देना चाहिए, और उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बच्चे में शुरू हो जाता है अच्छे से,
1: अच्छा
0: तो बच्चा उठ के खड़ा होने भी लगता है, तो ये सब करने देना
1: अच्छा जो
0: चाहिए।
1: ये आप पशु के बच्चा के चाटे के कहते हैं, तो मतलब जैसे भी बच्चा जमीन पे आए
0: जी,
1: तो के पशु के आगे लोग कर दें।
0: आगे कर दें, उससे चाटने से क्या होता है कि एक ममता की भावना भी रहती है, मदर इंस्टिंक्ट जो रहता है वो पशु में, उसके कारण जो है दूध उसका अच्छे से बनता है। ये सब प्रक्रियाएं मतलब लाभदायक होती हैं पशु के लिए। इसके बाद आखिरी चरण होता है जेर का गिरना। तो
1: अच्छा
0: जेर सामान्य तौर में आधे घंटे से लेकर के 7-8 घंटे में जेर गिर जाती है पशु की, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश जो है या संक्रमण हो बच्चेदानी में, उसके कारण जेर फंस जाती है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि घबराना नहीं चाहिए, और जब जेर 12 घंटे तक भी ना गिरे तब ये थोड़ा सा चिंता करने की बात है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो उस समय पशु चिकित्सक को बुला लें। लेकिन कुछ किसान भाई ये भ्रांति में रहते हैं कि जब तक जेर नहीं गिरती है तब तक पशु का दूध

0: दूध भी नहीं निकालते हैं, नवजात बछड़े को दूध ही पिलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: अगर जेर में विलम्ब हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे पहले आप जो है 2 घंटे के अंदर जो है नवजात बछड़े को माँ का दूध पिला देना चाहिए, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम होता है, जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है खीस, उसमें रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, तो और प्रोटीन भी ज्यादा रहता है, मिनरल्स वगैरह भी रहते हैं, तो वो जो नवजात बछड़े के लिए स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होते हैं और उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है नवजात बछड़े में।
1: डॉक्टर साहब, एक और चीज हम आपसे जानना चाहें कि जैसे आप कहते हैं कि जेर में देरी हो तो गिरे में जो उनका नवजात शिशु है, बछड़ा है या बछड़ी है, तो ओके दूध पिला देवे के है, तो का ओके दूध पिलेला के बाद ओके वो लोग उसे दूध निकाल भी सके ना किसान भाई, कि जब तक जेर ना गिरे तब तक उन लोगों के दूध भी ना निकाले के है?
0: नहीं, दूध निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत दूध निकाल सकते हैं।
1: अच्छा,
0: कोई जरूरी नहीं है दूध, बस ये ध्यान देना है कि दूध पूरा नहीं निकालना चाहिए। गाय भैंसों में जो हाई यील्डर्स हैं उनमें अगर पूरा दूध एक साथ नहीं निकालना जाता है, अगर एक साथ पूरा दूध निकालते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें जिसको मिल्क फीवर भी बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: पशु मतलब थकावट या कमजोरी के कारण बैठ जाता है या तापमान उसका गिर जाता है शरीर का, तो ये सब दिक्कतें होती हैं। तो थोड़ा सा दूध निकाल सकते हैं, 1/3 दूध लगभग, और वो 2-3 बार में करके निकालें।
1: डॉक्टर साहब, देखिये मैं वाले कई किसान भाई लोग शुरुआती जो कह जाओ कि मादा का दूध होला ओके वो लोग पिलावे न भी, तो क्या ये सही चीज है या इसमें कुछ उन्हों के सावधानी रखे के चाहे?
0: नहीं, ये नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए, उस माँ को पिलाने की जरूरत नहीं है उसका।
1: अच्छा।
0: कोलेस्ट्रम, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन रहता है तो इनडाइजेशन वाली समस्या हो जाती है। इसके बजाय जो बच्चा देने वाला पशु है, जो बच्चा देने के बाद उसको जो आहार जो देना चाहिए उसमें अच्छे से पचने वाले आहार जो है, आसानी से पचने वाले आहार देना चाहिए, जैसे चोकर हो गया, गुड़ हो गया, तेल हो गया, या कुछ जैसे घरेलू जो नुस्खे आयुर्वेदिक टाइप हैं उसमें जैसे मेथी हो गया, अदरक हो गया, अजवाइन हो गया, गुड़ के साथ, तेल और गुड़ के साथ, सरसों के तेल के साथ मिलाकर देने से पशु को थोड़ा सा आराम मिलता है। तो ये सब सावधानियां जो है और देखभाल करने की जरूरत होती है।
1: अच्छा, जैसे मादा बच्चा दे थिया तो उकरी कितना देर के बाद ओके सामान्य रूप से खाना खुराक देवे की चाहिए या उनमें उकरी खुराक में का का बदलाव आई, एकर का किसान भी लोग ध्यान रखे एक बारे में तुम्हें बताएं?
0: बच्चा देने के बाद पशु का जो भोजन है, मादा पशु का जो भोजन, उसमें अचानक से कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो आप खिला पिला रहे हैं वो खिलाते पिलाते रहिए, और कभी कभी होता है कि लोग हरा चारा बंद कर देते हैं या बहुत ज्यादा गर्म पानी पिलाते हैं, नमक मिला पिलाते हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल रोज चारा पानी दे रहे हैं उसको देते रहें, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट राशन बढ़ा दें उसका, और गुड़ वगैरह थोड़ा सा बढ़ा दें, लगभग 1 पाव गुड़ सुबह शाम कर दें। इसके अलावा कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट आते हैं जो ज्यादा दूध देने वाले जानवर, तो उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट भी पिला सकते हैं।
1: अच्छा।
0: कैल्शियम लिक्विड आते हैं सब, उनको भी पिला सकते हैं ताकि मिल्क फीवर या कैल्शियम फास्फोरस की जो कमी रहे दूध निकलने के कारण जो है उसमें ये न हो।
1: अच्छा, ब्याते समय लोग का सामान्य, जैसे हमारे किसान भैया लोग जो सुना था, का सामान्य सावधानी रखे एक बारे में तुम लोग बताए?
0: ब्याने के समय कुछ समस्याएं होती हैं, पशुपालक भाई घबरा जाते हैं, तो उसको थोड़ा समझने की जरूरत है, और समय पर जो है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पशु चिकित्सक को बुला लेना चाहिए ताकि उसका सही ट्रीटमेंट हो। उसमें जैसे प्रमुख समस्या जैसे डिस्टोकिया की समस्या आती है, जैसे बच्चा फंसने की समस्या, कभी कभी पता चला कि बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह नहीं खुला रहता है या बच्चेदानी में ऐठन नहीं होता है तो बच्चा बाहर नहीं निकल पाता, तो उसमें किसी अनुभवी व्यक्ति से जो है बच्चा बाहर निकलवा लेना चाहिए, या तो पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें पशु चिकित्सालय पर जाकर के, तो वहां से ये सहायता ले लेना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी जेर फंस जाती है तो हमने बताया कि 12 घंटे तक इंतजार करना चाहिए, 12 घंटे तक अगर नहीं गिरता है तो पशु चिकित्सक को बुला करके उसका निकलवाना चाहिए, और उसमें एक फ्यूरिया बोलस आता है उसको डाल देते हैं, बच्चेदानी में जो खेड़ी जो बची रहती है वो निकालने के बाद थोड़ा बहुत जो बची रहती है वो गल जाती है अंदर, एब्जॉर्ब हो जाती है।
1: तो ये कौन विशेषज्ञ या डॉक्टर भैया लोग के ही माध्यम से लोग कराए ना?
0: जी, ये प्रक्रिया पूरी तरह से अच्छे से कराना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इन्फेक्शन हो जाएगा तो बच्चेदानी में सूजन होगी, जलन होगी, जिसको मेट्राइटिस भी बोलते हैं हम लोग, तो ये सबसे बचने की जरूरत है। इसके अलावा अगर अगर अच्छे से ये सब ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो थनैला का भी चांसेस हो जाता है, मच्छरदानी में इन्फेक्शन हुआ तो फिर थन में भी इन्फेक्शन हो जाता है, फिर दूध भी पशु का

0: खराब हो जाता है, तो ये सब दिक्कतें रहती हैं। तो
1: अच्छा
0: इन सब से बचाव के लिए जो है सावधानी पूर्वक जो है पशु को जो है पशुपालक भाई ध्यान दें।
1: अगर ये तरह से किसान भैया लोग अपने पशु के ब्याते समय देखभाल रखें तो जरूर उनके लाभ हुई। तो डॉक्टर मनोज कुमार जी, आप हमने लोगों के कार्यक्रम कृषि जगत में ही नहीं एक अरब दे, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गौरी बहन,
3: हाँ बुझाऊन भैया।
2: देखा हमन जोन बत कही करत लिए जा सब्जी का, धान गेहूं का आ सरसों का खाए पियोली सामान, ओकरे साथे साथे अगर दूध ना हो जेके संतुलित आहार भी कहल जाला,
3: हाँ
2: तो दूध ना हो तो सेहत भी बढ़िया ना रही और खाए का आनंद भी नहीं आई,
3: हाँ
2: तो दूध कहाँ से होई।
3: और हड्डी मजबूत ना हुई तो फिर खेती किसानी
2: खेती
3: ऊपर
2: की
3: कहाँ
2: कितना निक
3: असर।
2: बात कहलू है। अच्छा, वो दूध का व्यवस्था करे बदे पशु होए के चाहिए और पशुन का देखभाल बहुत जरूरी है ना, चाहे गैया हो चाहे भैंस हो। तो देखा ब्याते समय पशुओं का देखभाल कैसे करे के चाहिए, इकर कितना बढ़िया और नीमन जानकारी डॉक्टर मनोज कुमार देहना हो। और एक चीज़ और है कि सतीश कुमार यादव बहुत फरियाए फरियाए के पूछबो कहीं ना हो, और डॉक्टर साहब वैसे ही फरियाए फरियाए के बताऊना हो।
3: अब तो जानकारी की बात तो हो गई, अब मैं कुछ मन मनसाइन भी।
2: हम बुझत रही है कि कुछ मन मैसान के तुहार मन करता, हमारे किसान भाई भी जो होते हैं कि लोगन लोग के भुलवाइबे करिए, कुछ मन मैसान करबो करियन। तो मन मैसान में आज आराधना सिंह और साथी का गीत है, तो हमारे पंच भैया भी सुने और हमन भी सुनल जाए।
3: सुनवा।

0: गौरी बहन,
1: हाँ बुजान भैया।
0: मन खुश हो गल ना? तो आज लोकगीत में राधना सिंह उनके साथी का कहरवा गीत रल है। हमारे किसान भाई भी जो होते रहना वो सुन ले ले यहाँ। आ एक बात कहीं, अब चले को भी बेला होते तो कल का कार्यक्रम का बा बताए दा।
1: कल सवेरे 6:05 पे खेती की बातें कार्यक्रम में करेला के खेती कैसे गल जा, करेला खेती पे जानकारी दी हन दिनेश कुमार सिंह भैया, और संध्या के कार्यक्रम पर प्रोग्राम हुए।
0: संध्या के यही समय अपने कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर बीज प्रौद्योगिकी का महत्व
1: हाँ
0: कहल जाला ना, कि बीजे से फसल है और बीजे से उत्पादन। अगर बीज
1: हाँ
0: बढ़िया बाए तो फसल भी बढ़िया हो
1: बढ़िया
0: जाए।
1: हुई।
0: एक विषय में बतकही हुई डॉक्टर अर्चना सान्याल से बातचीत करी हैं सतीश कुमार यादव। तो गौरी बहन, खेती बाड़ी के बात तो हो गई, अब घड़ी का सुई भी कहते कि चलाई का बेला हो गई है। तो
1: पंचो
0: पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की। फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म आज की आवाज़ का गीत। शब्द रचना हसन कमाल की थी और संगीत रवि का।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर गाए फिल्म लैला मजनू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

एक बार किए गए रक्तदान से आप 3 जिंदगियां बचा सकते हैं, तो क्यों ना रक्तदान का संकल्प लें। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PMsuryaghar.gov.in पर।
0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का छठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदू खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि आज उन्नाव की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो गई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।

0: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ताराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही हैं। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाली फर्टिलाइजर पर सरकार सब्सिडी दे रही है।
0: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रोक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए। यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर शामिल होंगे और आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल होंगे। आगरा में कल भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित 21 ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में एमएसएमई के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। इसी क्रम में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास और विरासत के समन्वय का

0: एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। इसी क्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर शैलेंद्र तोमर ने मेरठ में वृक्षारोपण किया और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश के बाद समाज की सहभागिता जुड़ने से परिदृश्य बदला है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब स्वच्छता का संदेश दिया गया था तो उसमें पूरे समाज की भागीदारी जोड़ने का आह्वान किया गया और उनके आह्वान के पश्चात आज हम देखते हैं कि उसके पूर्व रेलवे स्टेशनों का जो परिदृश्य हुआ करता था प्लेटफार्म गंदगी से भरे पड़े रहते थे, लेकिन जब माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा आह्वान किया गया समाज की सहभागिता इसमें जुड़ी, आज रेलवे स्टेशनों का दृश्य बदला हुआ दिखाई देता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यनाथ, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत आज लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए देश के बच्चों का पोषित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को और मजबूती के साथ चलाने की आवश्यकता बताई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स MSME फोरम और SME वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का छठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम रसरंग।

मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म आई मिलन की रात, इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं मिताली सिंह।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत हमारी आज की कलाकार थीं मिताली सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें यह कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल

0: सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत में पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो न केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ

0: चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था। लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड व्हेन दे डू दैट they also retain their unique identity.
1: Thank you so much, sir.
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन शिक्षा कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए
1: AI must improve lives, widen access, drive growth. And also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा
1: 2026 इज अ स्पेशल

0: and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की. इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई. बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया. एक रिपोर्ट.
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है. मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है. सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है. महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस.
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे. इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को

0: कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की।

0: मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparation for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as an AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
1: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
2: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
1: Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. The discussions focused on investment opportunities and expansion plans in India. Talking to Akashvani, CMA CGM Chairman and CEO Rodolphe Sade said, India is rapidly developing as a hub for green shipbuilding.
3: It's a great honor to meet with the Prime Minister to discuss about our development in India. We have been serving this market for many years, and we are looking forward to

0: In the women's 51 kg category, Meenakshi will face Kazakhstan Alua Balkibekova, while Sani will take on Poland's Kinga Krowaka in the women's 65 kg division. Prachi is set to meet Chinese Taipei's Chengyu Yang in the women's 57 kg quarterfinals. In the men's competition, Nikhil will face Azerbaijan's Amin Mamadzada in the 55 kg category. In hockey, India defeated Uruguay 3-2 in their third Pool A match of FIH Women's Nations Cup in New Zealand today. And Navi, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है. खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो. उन्होंने पेरिस में वीवाटेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया. वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया. वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की. ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान 9 दस्तखतशुदा मफाहमत नामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया. यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा मॉस्को तेल रिफाइनरी पर हमला किया है. और मीनाक्षी हुडा चीन में जारी मुक्केबाजी के आलमी कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं. कल चार भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे. अब खबरें तफसील से. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए भारत को इख्तिराआत और टेक्नोलॉजी के एक आलमी मरकज के तौर पर पेश किया. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो. उन्होंने कहा कि भारत ये मानता है कि रखना अंदाजी के इस अहद में टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचाई जाए. उन्होंने आलमी इख्तिराआतकारों से भी जोर देकर कहा कि वो भारत के साथ मिलकर काम करें और सब तक इसे पहुंचाएं.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as an AI country partner at VivaTech 2026
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत में एक तेज रफ्तार कायापलट हुई है जो टेक्नोलॉजी की नहीं मिन्नत है. जनाब मोदी ने फ्रांस के सरकर्दा कारोबारी लीडरों के साथ भी मीटिंग की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी और तकनीकी तआवुन को और भी मजबूत किया जा सके. मजीद तफसील हमारे नामा निगार से.
3: पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचनी चाहिए. उन्होंने मालियाती शमूलियत, तालीम, हिफ्जाने सेहत और ज़राअत जैसे शोबों में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट को उजागर किया. उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब दुनिया के बरवक्त होने वाले डिजिटल लेनदेन का तकरीबन आधा हिस्सा यूपीआई से तय पाता है और अब ये फ्रांस में भी दस्तयाब है. इससे कबल दिन में आज जनाब मोदी ने फ्रांस के बड़े सीईओ से मुलाकात की. सेंट गोबेन

0: मिस्त्रल ले आए और CGM लीडरों ने भारत की तरक्की के इम्कानात में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और सब्ज जहाजरानी के शोबों में ज्यादा सरमायाकारी और शराकतदारी के मंसूबों का ऐलान किया। वज़ीर आज़म इस वक्त एक अज़ीमुश्शान सकाफती प्रोग्राम बोंजो में शिरकत कर रहे हैं जिसे पेरिस में सॉल पेलेल सेंटर में भारतीय बिरादरी ने मुनाकिद किया है। फ्रांस के शहर पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
1: वज़ारत खारजा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के अहम नतायज को उजागर किया। पेरिस में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दौरे के दौरान तीन अहम सुतूनों तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई नीज बैनल अक्वामी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने नीज में मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स स्कीम का इफ्तिताह किया जो भारत में टेक्नोलॉजी की महारत वाले स्टार्टअप्स के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इस प्रोग्राम में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने शिरकत की। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आज आला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने इम्तिहान के अमल में सालमियत, शफाफियत और सलाहियत के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मुतालिका एहलकारों को हिदायत दी कि वो निगरानी कायम रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को आजादाना और मुनसिफाना तौर पर मुनक़िद किए जाने के लिए तमाम जरूरी इंतजामात हों। जनाब प्रधान ने कहा कि वजारत की जानिब से नामजद अफराद तमाम रियासतों में तैनात होंगे ताकि वो इम्तिहान से मुतालिक सरगर्मियों से तालमेल कायम रखें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की सदारत में कायम मरकजी कमांड सेंटर को रिपोर्ट करें। मीटिंग के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से भी ये कहा गया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उम्मीदवारों को सभी जरूरी सहूलियात मुहैया कराई जाएं जिसमें इम्तिहान में बैठने के मुनासिब इंतजामात और पीने का पानी शामिल है ताकि वो हर किस्म के दबाव से पाक माहौल में इम्तिहान दे सकें। नीट यूजी इम्तिहान 2026 में अब जबकि सिर्फ तीन रोज बाकी रह गए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को चाहिए कि पुरसुकून रहें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने पूरे साल सख्त मेहनत की है, लिहाजा अब उन्हें मुनासिब सुकून और इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। NTA ने एक महफूज, मुनसिफाना और शफाफ माहौल में इम्तिहान मुनाकिद कराए जाने की यकीन दहानी भी कराई है। वजारत तालीम ने आज बताया कि यूनिवर्सिटी की QS आलमी दर्जाबंदी 2027 में 52 भारतीय तालीमी इदारे शामिल हैं। भारत की जानिब से सबसे ऊपर के दर्जे में IIT दिल्ली है जो आलमी सतह पर 118वें नंबर पर है, जबकि IIT बॉम्बे और IIT मद्रास भी दुनिया की बेहतरीन 200 यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आलमी सतह पर भारत के तालीम से मुतालिक नक्शे कदम मुसलसल वसत इख्तियार कर रहे हैं। अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊदी अरब के हज और उमरे की वजारत ने भारत को 2 लब्बैतुल अवार्ड अता किए। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्द ही नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई जायजा मीटिंगों की सदारत की और कोऑपरेटिव बैंकिंग, नामियाती मसनूआत और कोऑपरेटिव बरामदात को मुस्तहकम करने के कौमी लाए अमल का जायजा लिया। कोऑपरेटिव बैंकिंग की बड़ी स्कीमों का जायजा लेने के दौरान जनाब शाह ने टेक्नोलॉजी को इख्तियार करके हुक्मरानी को बेहतर बनाकर और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अदायगी, खिदमात के मुश्तरका प्लेटफॉर्म और खिदमात की फरोख़शुदा डिलीवरी के जरिए कोऑपरेटिव बैंकिंग को मुस्तहकम करने की गरज से किए गए मुख्तलिफ इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कॉरपोरेट उमूर की वजारत ने एक बयान में बताया कि आने वाले बरसों में मुजव्वजा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के तआवुन में उसके किरदार के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया।

0: कोऑपरेटिव बैंकों के लिए सहकार सारथी टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाने वाले इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के सदर मसूद पेसिशकियान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाए नए मफाहमत नामे को एक तारीखी दस्तावेज और एक मजबूत ईरान की जानिब से पैगाम दिया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमन सिर्फ बाहमी एहतराम के जरिए हासिल किया जा सकता है और उन्होंने अपने वक़ार, आज़ादी और इलाकाई तआवुन के तहफ्फुज़ के साथ आलमी अमन के तय ईरान के अज़्म की तौसीक की। वर्सा में G7 समिट से अलग फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों के साथ एक इशाइये के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दस्तावेज पर दस्तखत करने से कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि ये समझौता तय पाना आसान नहीं था। दस्तखत किए गए मुआहदे को बाद में तेहरान भेजा गया और फिर सदर पेजिशकियान ने इस पर दस्तखत किए। फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों ने इस मुआहदे का ये कहकर खैर मकदम किया कि इससे देरपा अमन और आबनाए हुरमुज के दोबारा खोले जाने के लिए राह हमवार होगी, जिससे आलमी सतह पर तवानाई की कीमत में कमी आने में मदद मिलेगी। यूक्रेन ने मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी पर इस हफ्ते के दौरान दूसरी मर्तबा रातों रात हमला किया। इसके अलावा रूस के रोस्तोव खित्ते में कई मकामात को निशाना बनाया गया है। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने यह कहकर इन हमलों की तस्दीक की कि मॉस्को के जुनूब मशरकी मजाफात में वाकई मॉस्को तेल रिफाइनरी पर कई ड्रोन से हमला किया गया। रूस की वजारत दिफा ने बताया कि मुल्क भर में यूक्रेन के 555 ड्रोन को बीच में ही रोककर जाया किया गया। रूस की ट्रांसपोर्ट वजारत ने बताया कि हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से परवाजें रोक दी गईं। रूस की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने कहा है कि मॉस्को पर यह हमला इस बरस के सबसे बड़े हमले में से एक है। इधर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को रूस की जारी फौजी कार्रवाइयों के जवाब में एक काबिले जवाज रद्द अमल करार दिया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की तमाम रिफाइनरीज अपनी आला तरीन गुंजाइश के साथ काम कर रही हैं और उनके पास खातिर ख्वाह खाम तेल दस्तियाब है। साथ ही पेट्रोल और डीजल का मुनासिब जखीरा भी बरकरार रखा गया है। मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के तनाजुर में नई दिल्ली में आज बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,36,00,000 LPG सिलेंडर की बुकिंग मौसूल हुई है, जबकि 1,47,00,000 सिलेंडरों की डिलीवरी दी गई है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि माल्टा के झंडे वाला LNG जहाज दिशा, जिस पर 62,370 मैट्रिक टन LNG है, कल सुबह गुजरात के दहेज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। ये जहाज पीर को आबनाए हुरमुस से निकला था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बड़े नए जाब्ते को मंजूरी दी है, जिसके तहत सोशल मीडिया के लिए कम अज कम उम्र 15 बरस तय की गई है। इस बड़े कदम का मकसद डिजिटल स्पेस में बच्चों के तहफ्फुज को मुस्तहकम करना है। शेख मोहम्मद बिन राशिदुल मख्तूम की सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने यह फैसला किया। इस करारदाद के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और चलाने की इजाजत नहीं होगी और न उन्हें इंटरेक्टिव फीचर्स से, जैसे किसी मवाद को पोस्ट करने, उस पर कमेंट करने या उसे शेयर करने या पब्लिक ग्रुपों को ज्वाइन करने तक रसाई हासिल होगी। 15 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को महदूद रसाई हासिल होगी, लेकिन वो सख्त निगरानी में ही रसाई हासिल कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म्स को इन जाब्तों पर पूरी तरह से अमल करने के लिए 12 महीने का वक्त दिया गया है। चीन के गियांग में जारी आलमी मुक्केबाजी कप 2026 में आज भारत की मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। मीनाक्षी ने खवातीन के 51 किलोग्राम जुमरे के 16 प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पोलैंड की नटालिया को 5-0 से शानदार जीत

आपको भूल जाएं हम, ऐसे तो हम बेवफा नहीं। जी हाँ साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंजुमन, और यह है कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: हुजूर आपका एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। यह श्रोता हूँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंजुमन।
1: वो सब होगी इंशाल्लाह। तो ये आपकी बड़ी पहले से फरमाइश आई हुई है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सारा।

0: Yeah.
1: रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के सामा हो गए। कार्यक्रम अंजुमन में अभी आप सुन रहे थे ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का ज्ञानेश्वर का प्यार भरा नमस्कार। ये पहला फरमाइशी पत्र जो आया हुआ है वो नई बस्ती रामनगर से है। ब्यूटी, पप्पू, निक्की, इरफान, रौनक, तबस्सुम, बेला और नजरान का। ये दूसरा पत्र है दुर्गा कॉलोनी से राजू, बबीता, सुभाष, बब्बू, डब्बू, राजकुमार और सरजीत का। ये अगला फरमाइशी पत्र आया हुआ है मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत, सरिता, वैशाली, शैलेश, सुमित कुमार और विंध्यवासिनी का। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म लव इन टोक्यो का गीत, तो आइए सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद पर फिल्म लव इन टोक्यो का ये गीत।

ये अगला फरमाइशी पत्र जो मेरे हाथ में है वो है धमतरी छत्तीसगढ़ से। इन्होंने फिल्म लोफर की गीत की सुनने की फरमाइश की है। ये हैं संतोष कुमार रघुवंशी, सरोज रघुवंशी, किरण रघुवंशी, मास्टर शानू रघुवंशी और इनके मम्मी पापा। इसी फिल्म के गीत को सुनना चाहा है कोबरा छत्तीसगढ़ से जोहित, विपिन, आयुष, फूल जी और इनके समस्त परिवार। संगम नगरी से ये पत्र आया हुआ है रामप्रकाश गौतम, मंजू गौतम, प्रेमचंद्र, विजय, डीपी यादव एवं सौरभ वर्मा का। आप सब सुनना चाहें फिल्म

ये पत्र आया है पानीपत टाउन से। संदीप, आशा, पूजा, नानू, नेहा, सागर, गुंबर, हिमांशु, गुलगानी और बिट्टू का। ये अगला पत्र है महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, नवासी हुमैरा नाज, वसीम अकरम, शमीम अकरम, बाबू अमन अकरम, बच्चू शेख, चीना शेख का। टोली मंडी से ये पत्र है मोहम्मद शहनवाज परवेज, मुसर्रत जहानाज, शाहपुर बघौनी से है मोहम्मद शकूर आलम, अल्तमश जहां। ये बक्सर बिहार से है सरफुद्दीन अंसारी, प्यारी नाज, बाबू असलम, बाबू अकरम, बाबू अल्तफ, एस डी अंसारी, फिरोज आलम, बाबू पेंटर, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमान आज, समीउल्ला अंसारी और गोलघर कुआत से बेलाल और जीनत प्रवीण का। आप सब सुनना चाहें लव स्टोरी का ये गीत।

ये फरमाइशी पत्र आया हुआ है भिलाई छत्तीसगढ़ से, मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा का। ये अगला पत्र है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु, अश्विन, गोविंद, टोनी, लव और दिनेश का। दौलताबाग मुरादाबाद से ये पत्र है हुसैन अंसारी, समीर अंसारी, वसीम अंसारी, वलीउल्लाह अंसारी, शहनाज बानो और उनके मम्मी पापा का। ग्राम तितवारा से ये पत्र है महेंद्र प्रताप, जया, ममता, मनीष और मकरम का। और ये अगला पत्र है अहमदनगर से सुनील, लता, शुभम और शुभांगी का। आप सब सुनना चाहें फिल्म हीर राजा का ये गीत।

श्रोताओं, ये अगला पत्र है कुदई चौकी देहलू गली से अनीश, अजीम, नफीस, शेरू, शाहिद और अनवर भाई जरीवाला का। सुंदरपुर वाराणसी से ये पत्र है प्रीति, सौरभ, ऋतु सान्याल, रिया, दिया, मेघना और लकी का। ये पत्र है पतली गली वाराणसी से मुश्ताक सुरैना, शाहिद मुश्ताक वाला, साजिद मुश्ताक वाला, नासिर मुश्ताक वाला, जावेद मुश्ताक वाला। अनारबाग से ये पत्र है गुड़िया, शाहिद और आयशा का। मनकारा मंदिर रोड से ये पत्र है पन्नीलाल, बेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष, अमर, हितेश, रूबी, एकता, दिव्या, ममता और ओमोती का। आप सबने सुना चाहा है फिल्म तीसरी कसम का गीत। श्रोताओं, अगर आप भी अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें पत्र लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी। हमारा पिन कोड है 221010।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायन। कलाकार हैं उस्ताद विलायत हुसैन खां। आज प्रस्तुत है इनका गाया राग जोग।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थे उस्ताद विलायत हुसैन खां। आज आपने सुना इनका गाया राग जोग। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया गया। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और

0: scoring, adding another goal. With three wins from three matches, India topped Pool A and advanced to the semi-finals, where they will face Chile on Saturday. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 241.56 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज, डीटीएच, डीआरएम 1223 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:53 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: consecutive win and finish on top of Pool A in the FIH Women's Nations Cup in New Zealand today. After conceding an early goal, India staged a strong comeback with Deepika scoring twice and Deepika Soreng adding another goal. With three wins from three matches, India topped Pool A and advanced to the semi-finals where they will face Chile on Saturday. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 241.56 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज, डीटीएच, डीआरएम 1223 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:53 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।